0: फाइनल है, कभी आई लव यू नहीं बोलना है, राइट?
1: राइट.
0: कूल. वैसे नेवर से आई लव यू को फ्रेंच में कैसे बोलते हैं?
1: नदी जमे जते.
2: नदी जमे जते. आह, इट्स सो सेक्सी.

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: के 6 बजे है चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे अभी नमस्कार
1: निलमणि श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले हैं उतरते हैं फीफा विश्व कप 2026 के मैदान पर जहां पर शनिवार को मायामी में खेले गए एक रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरे तीसरे स्थान के विश्व कप प्लेऑफ्स मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हरा दिया।

0: ये फिनिश सन 1966 के बाद से विश्व कप में इंग्लैंड का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। आपको बता दें कि किलियान एम्बापे ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे स्थान के इस मैच में फ्रांस के लिए 2 गोल करके विश्व कप कैरियर में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया और कुल 22 गोल तक पहुंच गए। फैसले का दिन आ गया है। जी हाँ, वह महामुकाबला जिसका सबसे बेसब्री से इंतजार था आखिरकार आज होने जा रहा है। आज पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका के न्यूजर्सी स्थित मेटलाइफ स्टेडियम पर टिकी होंगी, जहां फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मैच खेला जाएगा। इस खिताबी मुकाबले में स्पेन और अर्जेंटीना की टीमें आमने सामने होंगी। मैच की शुरुआत मॉरिशस के समयानुसार 11 बजे होगी। इस ड्रीम फाइनल को लेकर मॉरिशस में भी फुटबॉल प्रेमियों का उत्साह 7वें आसमान पर है। आपको बता दें कि इस फाइनल का कोई भी पल मिस अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो MBC 11, MBC 7 और साथ ही MBC प्ले ऐप पर लाइव देख सकेंगे। समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। स्कूलों में अब पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान होगा और मोबाइल का ध्यान भटकाना कम। जी हाँ, सरकार ने एक नया नियम एजुकेशन रेगुलेशन 2026 लागू किया है, जिसके तहत स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। अब स्कूल के समय के दौरान छात्रों को अपने फोन बंद या संभाल कर रखने होंगे, सिवाय कुछ खास जरूरतों की। कक्षा में ध्यान भटकने, ऑनलाइन बदमाशी यानी कि साइबर बुलिंग को रोकने और स्कूल के माहौल को बेहतर बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। शिक्षा मंत्रालय का उद्देश्य है स्कूलों में अनुशासन बढ़ाना और पढ़ाई के लिए एक अच्छा माहौल तैयार करना है। सिंगापुर कॉरपोरेशन एंटरप्राइज की मदद से ई पासपोर्ट को काम को आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों देशों के बीच हुए एक समझौते के तहत एक सलाहकार इस नई प्रणाली को लागू करने के वास्ते तकनीकी सहायता और क्वालिटी चेकिंग की सुविधा देगा। और विदेशी स्तर पर पश्चिम एशिया में 4 महीनों से ज्यादा समय से जारी भीषण संघर्ष दिन प्रतिदिन और भयावह होता जा रहा है। इसी में शनिवार को अमेरिकी सेना ने बताया कि जोर्डन में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन हमलों का मुकाबला करते हुए उनके 2 और सैनिक मारे गए हैं। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा, सिवाय ऊंचे इलाके पर हल्की सी बारिश होगी। दोपहर को सेंट्रल प्लेटो पर बादलों के घेराव के साथ वर्षा हो सकेगी। रात के दौरान ऊंचे इलाके पर थोड़े से बादल घेराएंगे और रह रहकर बरसात होगी। प्रवाल रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, खासकर दक्षिणी और पश्चिमी लगुनों के उस पार, अतः दूर समंदर में न निकलने की मांग की जाती है। तापमान, सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सूर्योदय लगभग 7:45 बजे जबकि सूर्यास्त शाम के 5:48 पर।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM फ्री मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

حبيب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तुमने अपनी तमाम औलाद को भी इसी तरह दिया है? उन्होंने अर्ज़ किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करो। एक और रिवायत में फरमाया, मैं जुल्म पर गवाह नहीं बनता। यह हदीस वालिदैन को अदल व इंसाफ का अजीम दर्स देती है। अगर वालिदैन बिला वजह एक बच्चे को दूसरे पर तरजीह दें तो इससे हसद, नफ़रत और ख़ानदानी इख्तलाफात जन्म लेते हैं। इस्लाम वालिदैन को हुक्म देता है कि मोहब्बत, तवज्जो, तहाइफ और हुस्न सुलूक में हत्तल इम्कान इंसाफ से काम लें। अगर किसी बच्चे को बीमारी, माजूरी या किसी हकीकी ज़रूरत की बिना पर ज़्यादा मदद दी जाए तो वो अलग मामला है, लेकिन महज पसंद व नापसंद की बुनियाद पर इम्तियाज़ करना दुरुस्त नहीं। इंसाफ करने वाले वालिदैन अपने बच्चों के दिल जीत लेते हैं और ख़ानदान में मोहब्बत बरकरार रहती है।

अल्लाह ताला भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, मेरे 10 बच्चे हैं लेकिन मैंने कभी किसी को बोसा नहीं दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ़ देखा और फरमाया, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली ज़िंदगी से साबित किया कि बच्चों से मोहब्बत करना, उन्हें गले लगाना, बोसा देना, उनके साथ खेलना और शफकत का इजहार करना ईमान और हुस्न अखलाक की अलामत है। बाज़ लोग सख्ती को वकार समझते हैं, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरे रवैये को पसंद फरमाया। जब वालिदैन बच्चों से मोहब्बत करते हैं तो बच्चे भी एतमाद, सुकून और अच्छे अखलाक के साथ परवान चढ़ते हैं। मोहब्बत और शफकत तरबियत का बुनियादी ज़रिया है, जबकि बेजा सख्ती बच्चों के दिल में खौफ और दूरी पैदा कर सकती है।

तहकीर के बजाय हिकमत और सब्र से इस्लाह करें, उनके सवालात का जवाब दें, उनकी हौसला अफजाई करें और उनके अच्छे कामों की तारीफ करें। उनके सामने एक सालेह मुसलमान, अच्छे इंसान और बेहतरीन किरदार का नमूना बने। याद रखें कि औलाद सिर्फ आपकी विरासत नहीं बल्कि अल्लाह ताला की अमानत है, और इस अमानत की बेहतरीन हिफाजत ही दुनिया व आखिरत की कामयाबी का ज़रिया है। सामीन मोहतरम, सबाल खैर प्रोग्राम अनकरीब ख़त्म होने वाला है। आइए आखिर में रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजराना पेश करते हैं। इंशाल्लाह समीर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

94.5 RFM.

समस्त श्रोताओं को नीतूषा का करजोर प्रणाम। इस समय रेडियो मनोरंजन की लहरों पर आप भक्ति में शक्ति कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। आइए श्री गणेश करते हैं।

श्रोताओं, इन दिनों गुप्त नवरात्रि चल रही है। जी हाँ, हिंदू संस्कृति में नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि माँ आदि शक्ति की उपासना, आत्मशुद्धि और दिव्य ऊर्जा को जागृत करने का पवित्र अवसर है। साल में 4 बार नवरात्रि आती है, जिनमें से 2 प्रमुख नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, सभी भक्तों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। इनके अलावा 2 गुप्त नवरात्रियां भी होती हैं, जो अपनी रहस्यमय और आध्यात्मिक साधना के लिए विशेष मानी जाती हैं।

शब्द का अर्थ होता है छुपा हुआ या गुप्त रूप से किया गया। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के उन दिव्य रूपों की आराधना की जाती है जो गहरी साधना, मंत्र जप और आंतरिक शक्ति के जागरण से संबंधित हैं। ये समय बाहरी दिखावे से दूर होकर अपने मन, विचार और आत्मा की शुद्धि करने का अवसर होता है।

नवरात्रि में मां दुर्गा के 10 महाविद्या स्वरूपों की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। ये 10 महाविद्या हैं मां काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, चिन्नमस्त, भैरवी, धूमवती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। इन स्वरूपों को शक्ति के अलग-अलग रूप माना जाता है, जो भक्तों को ज्ञान, साहस, रक्षा और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है।

नवरात्रि के समय साधकों के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। इस दौरान मंत्र जप, ध्यान, हवन, पाठ और माँ की भक्ति करने से मन में शांति, एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भक्त अपने जीवन से नकारात्मक विचारों को दूर करने और अपने अंदर की दिव्य शक्ति को पहचानने का प्रयास करते हैं। माँ शक्ति हमें ये संदेश देती है कि असली बल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर छुपा होता है। जब इंसान श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ अपने मन को पवित्र बनाता है, तब वो हर कठिन परिस्थिति का सामना करने की शक्ति प्राप्त करता है।

0: चैत्र नवरात्रि हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़े बदलाव शोर से नहीं बल्कि शांति और अंतर मंथन से आते हैं। जैसे एक बीज मिट्टी के अंदर चुप रहकर एक दिन विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही गुप्त साधना से व्यक्ति के अंदर की दिव्यता जागृत होती है। इस पवित्र अवसर पर हमें माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दे, हमारे मन से अहंकार, भय और नकारात्मकता को दूर करे और हमारे जीवन में प्रेम, करुणा और शांति का प्रकाश फैलाए। गुप्त नवरात्रि हमें ये याद दिलाती है कि माँ की कृपा हमेशा हमारे साथ होती है। जरूरत है तो बस सच्ची श्रद्धा, पवित्र भावना और निर्मल हृदय से माँ को याद करने की। जय माँ दुर्गा, जय माँ शक्ति, प्रणाम, शुभ दिन।
1: जग की रचना रचने।

烟雨朦胧的扬州画卷缓缓收起，我们顺着流水去往温柔水乡，接下来江山的梦里水乡。

赏完江南小桥流水，换一份人间烟火温柔，去感受一座城市的细碎浪漫。赵磊的《成都》送给大家。

一座城市藏着无数相遇，世间所有相逢都是一场难得的传奇。一起来听李健的传奇。

一次心动足够难忘，而世间还有无数奔赴与牵挂，跨过万水千山只为一人。请听海蓝 M 带来的万水千山。

看过辽阔山海，回头再忆陈年往事。春风吹起一场旧梦，东风旧梦唱进心底遗憾。请欣赏

0: सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. अभी से अभी आपको नमस्कार.
1: नमस्कार पूनम. श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब. संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं. शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ. कल रात पोटली में एक जानलेवा सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक राहगीर की मौत हो गई. ये दुर्घटना रात के करीब 8 बजे रुई भाबों में वेनिस पुल के पास हुई. एक गाड़ी ओलमुका रोड के निवासी देजीरे कैटो से जा टकराई. गाड़ी चालक 28 वर्ष का बताया जा रहा है. स्थल पर पहुंचने पर सामू ने 70 साल के एक के इस व्यक्ति की मौत की पुष्टि की और शव को एसएसओरएन अस्पताल ले जाया गया. जानकारियों के अनुसार दुर्घटना के वक्त सड़क साफ थी और मौसम भी अच्छा था. अभी तक कोई भी गवाह सामने नहीं आया है. स्थल पर पाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरों के दृश्य जल्द ही देखे जाएंगे. सिंगापुर कॉरपोरेशन एंटरप्राइज की मदद से ई पासपोर्ट के काम को आगे बढ़ाया जाएगा. दोनों देशों के बीच हुए एक समझौते के तहत एक सलाहकार इस नई प्रणाली को लागू करने के वास्ते तकनीकी सहायता और क्वालिटी चेकिंग की सुविधा देगा. जैसा कि पिछले 19 जून के बजट भाषण में बताया गया था, सरकार सीमाओं के प्रबंधन के लिए एक नया डिजिटल सिस्टम तैयार कर रही है. इसका उद्देश्य है सुरक्षा को और मजबूत करना और हवाई अड्डे पर यात्रियों की आवाजाही प्रक्रिया को आसान बनाना. कल शनिवार 18 जुलाई से वर्ल्ड ट्रैवल इन 360 की एक टीम मॉरिशस में है. 21 जुलाई तक ये टीम गूगल स्ट्रीट व्यू प्रोजेक्ट के लिए पहली बार 360 डिग्री की खास तस्वीरें और वीडियो लेने का काम करेगी. इस काम के लिए अल्ट्रा हाई डेफिनेशन कैमरों से लैस 4 गाड़ियां पूरी द्वीप में घूमेंगी. ये गाड़ियां यहाँ की सरकारी सड़कों, मुख्य पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक जगहों तथा अन्य खास ठिकानों की तस्वीरें कैमरे में कैद करेंगी. विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि स्काई रूट एयरो स्पेस के विक्रम 1 रॉकेट को शनिवार सुबह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया. ये भारत में किसी निजी कंपनी द्वारा बनाए गए ओबिटल क्लास रॉकेट की पहली उड़ान है. इस मिशन को नाम दिया गया है मिशन आगमन. ये भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक कदम है. भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और इसे ऐतिहासिक नई शुरुआत बताया है. तो ये थी अब तक की खबरें. आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद. जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार. जीना गली स्टैनली में 81 साल के जनाब शेख इद्रिस शाह लाल मोहम्मद जिन्हें सब लोग इद्रिस लाल मोहम्मद के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गया है. उनका जनाजा आज दिन के डेढ़ बजे उनके भांजे जनाब शेख अबू अंजारी लाल मोहम्मद के मकान जीना गली स्टैनली से निकालकर दफनाने के लिए सैमौते का कब्रस्तान ले जाया जाएगा. फ्यूनरल टुडे सुल्फेरिनो नंबर एक वाकवा में 60 साल की 60 इयर्स ओल्ड की श्रीमती महेश्री देदी दयाल पैदाइशी नाम चुकोरी और जिन्हें सब लोग बीता के नाम से

0: जितने भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उन्हीं के घर सुल्फेगिनो नंबर 1 वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेगिनो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

0: गया।
1: कभी सोचा है
0: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
0: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
0: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
0: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
0: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
0: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस,
0: डोंट मिस इट।
2: You're listening to RM3 Radio Man.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: 12:13 हुए हैं, आज है संडे 19 जुलाई, रविवार का दिन है 19 जुलाई 2026। हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, गुड आफ्टरनून। आर एम फ्री रेडियो मनोरंजन से जुड़ने के लिए थैंक यू मेरे दोस्त। और शुरू हो चुका है आपका ही अपना पसंदीदा प्रोग्राम सुहाना सफर। और आज है स्पेशल संडे आफ्टरनून शो, यानी कि 3 घंटों का सफर होगा और मैं हूँ दिविना आप सबों के साथ। और आज खास क्या होने वाला है, हम जब आते हैं कुछ ना कुछ खास लेकर ही आते हैं, क्योंकि संडे जो है वो खुशनुमा दिन है, खूबसूरत दिन है, और इसको और खूबसूरत बनाने के लिए हम कुछ फॉर्मूला लेकर आते हैं। तो आज क्या होने वाला है बताते हैं आपको। वैसे सबसे पहले इस रविवार की इस खूबसूरत दोपहर में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी लिसनर्स का, आप सभी दोस्तों का हम दिल से स्वागत करते हैं एमबीसी रेडियो मनोरंजन पर। मैं हूँ देविना, और यादों, संगीत और मोहब्बत के उस सुनहरे सफर

सफर पर निकल पड़ते हैं एक साथ, जहां हर गीत दिल की धड़कनों से बात करेगा। और आज का हमारा विशेष स्पेशल अंक है हिंदी सिनेमा के महानायक शहंशाह अमिताभ बच्चन, बिग बी बच्चन साहब के उन सदाबहार युगल गीतों को, यानी कि डुएट जो हैं उन पर पिक्चराइज, उनके जो ऑन स्क्रीन हीरोइंस थी जिन्होंने न जाने कितनी प्रेम कहानियों को अपनी मधुर धुनों से सजाया है, कभी रेखा के साथ, कभी जया बच्चन, कभी परवीन बाबी, कभी जीनत अमान, तो कभी स्मिता पाटिल, कभी हेमा मालिनी, श्रीदेवी भी थी, जया प्रदा भी थी, साथ में वो मीनाक्षी शिष्टाचार्य, कितनी खूबसूरत हीरोइन के साथ उन्होंने काम किया। तो उन हीरोइन के में से आपको अच्छा क्या लगा जोड़ीदार जो है आप हमें बता सकते हैं ऑन 4028070 या मैसेजेस 5250600 पर। तो आपको बच्चन साहब की कौन सा गाना पसंद है, जिसमें कौन सी हीरोइन इनके साथ होती है आपको पसंद है उनकी जोड़ी, तो बस यहाँ पर आप बता सकते हैं। बड़े पर्दे पर क्या जादू बिखेरा उन्होंने एक साथ, तो तैयार हो जाइए यादों की उस हसीन दुनिया में खो जाने के लिए, जहाँ हर गीत एक कहानी होती है, हर धुन एक एहसास होता है। तो शुरुआत हमने कर लिया महान मूवी के इस रोमांटिक गाने के साथ, आशा जी की आवाज़ में साथ में थे किशोरदा। और अभी के लिए हम कैसे भूले जो उनकी जो जीवन संगीनी है, बच्चन साहब की जीवन संगीनी जया बच्चन, पर पिक्चर आज साथ में थे फिल्म अभिमान।

0: You're listening RM Free Radio. Radio.
1: सफर ओए आज रपट जाए तो हमें न उठाइयो अगमर उठाने आइएगा हम गिर जाए तो बस ये था बड़ी ही मजेदार गाना आप सुन रहे थे आपको याद होगा स्मिता पाटिल कितनी सुंदर दिख रही थी इसमें थे बच्चन साहब और फिल्म नमक हलाल तो आज खास तौर पर अमिताभ बच्चन साहब के डुएट सॉन्ग्स हम चलाने वाले हैं और आपको किस एक्ट्रेस की जोड़ी उनके साथ अच्छी लगती है आपको देखना अच्छा लगता है तो बस आप ये बताएं और बहुत से लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं और बता रहे हैं तो अगर देखा जाए तो इतने इस अगले गाने की फरमाइश आई है बहुत लोगों की ओर से और उनको एक्चुअली रेखा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी अच्छी लगती है वाह जी वाह और रेखा तो इतनी सुंदर ही है ना तो इनके बारे में बहुत बातें हुई मगर ऑन स्क्रीन उनकी जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया और वैसे कुछ फिल्मों में उन्होंने एक साथ काम किया 70s 80s में सिलसिला मूवी मुकद्दर का सिकंदर मिस्टर नटवरलाल दो अनजाने खून पसीना सुहागा राम बलराम आदि और आज भी अगर रेखा को देखा आपने देखा रेखा को फिल्म फेयर अवार्ड्स में जो वहाँ पर होता है आज भी इतनी ही खूबसूरत लगती हैं जैसे तो उम्र बढ़ती है मगर जैसे कहते हैं ना समय के साथ और भी खूबसूरत हो गई है और बच्चन साहब के साथ उनका डांस उनके डायलॉग्स कौन भूल सकता है और कुछ गाने ऐसे हैं कुछ फिल्में ऐसी हैं जो कभी पुराने नहीं होती और समय बदल जाता है परंतु उनका जो जादू है हमेशा बरकरार रहता है अमिताभ बच्चन की गहरी आवाज़ उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व और उनके साथ सुरों की मधुर संगत बस दिल को छू जाती है कहते हैं रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती एक दूसरे को बदलने में नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने में होती है और अगला गाना जो है आप सबों के नाम करने वाले हैं जी हाँ गायत्री जी ने हमें फ़ोन किया और कह रही हैं लंच करने जा रही है मगर इससे पहले हमसे बात की थैंक यू गायत्री

जी, और ये गाना जो सिलसिला वाला ही गाना उनको सुनना है, तो ये होगा अमृता के लिए मेधा, नेहा, क्षिति, दिव्या, भाभी मीरा, सुधीर, कमलेश, सुधा और जितने परिवार हैं उनके नाम। साथी फिक्रों फ्लक्स अनिता जी वो ये गाना सुनना चाहती हैं और वे कह रही हैं वो बहुत बिजी होगी अगस्त में, मगर अभी बहुत दिन बाकी हैं अनिता जी, जब आप फ्री हो रही अभी फ्री हैं तो हमें फ़ोन कर रही हैं, थैंक यू, अगर मौका ना मिले तो बस एक मैसेज भेज दिया देना, बस हम समझ जाएंगे। तो सिलसिला फिल्म का जो गाना है अनिता जी आपके लिए और सभी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए। और ये जो है दोस्ती चेहरे की मुस्कान होती है, दोस्ती चेहरे की मुस्कान होती है, ये भेजा है प्यारी सी अनिता जी फ्रॉम मोरारबी, हमेशा जब आती हैं कुछ ना कुछ भेजती रहती हैं, थैंक यू अनिता जी। तो करुणा, अमृता और दोस्ती के लिए फिल्म सिलसिला ऑफ कोर्स ये गाना हम चलाने वाले हैं, और लता मंगेशकर साथ में अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़, और ये गाना जो है ना ये कहाँ आ गए हम। जी हाँ, आपसे बातें करते करते गाने सुनते सुनते सुहाना सफ़र प्रोग्राम लेकर हम आ जाते हैं हर रविवार को, बस इसको एंजॉय कीजिए।

मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: You're listening RM Free Radio. Radio.
1: सुहाना सफर। जी आज का है संडे का दिन और संडे का दिन जो होता है ना रिलैक्स करने का दिन होता है, प्यार करने का मूड आ जाता है, रिलैक्स करने का मूड आ जाता है और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ये भी तो संडे का दिन ही वो हो सकता है, क्योंकि संडे वाला दिन जो फीलिंग आता है ना वो तो अलग ही आता है। चाहे हम काम भी करने जाए मगर संडे का दिन हमारा जो दिल है खुश हो जाता है। और ऐसे में गाने हम चलाएं और वो भी पिक्चराइज ऑन द बिग बी बच्चन साहब ऑफ बॉलीवुड और उनके साथ जो जोड़ी कलाकार, आपको कौन सा अच्छा लगता है? हमें अभी तक बहुत से मैसेजेस आ गए हैं, बहुत से कॉल्स आ गए हैं और अभी आपने सुना ये दिन तो आता है एक दिन जवानी में, फिर महान का गाना। और दोस्तों प्यार की भाषा जो है शब्दों से नहीं एहसासों से लिखी जाती है और जब बच्चन साहब के रोमांटिक डुएट सॉन्ग बजते हैं तो हर दिल अपनी कोई ना कोई खूबसूरत याद जरूर

ले आता है, हम जी लेते हैं उन समय, उस वक्त जब ये गाने चलते थे, हम बचपन में थे या जवानी में थे। तो ये गाना आज हम फिर से जी रहे हैं सुहाना सफ़र प्रोग्राम में। तो आज है स्पेशल बच्चन साहब और उनके एक्ट्रेसेस पर पिक्चराइज कुछ गाने। अगर इतने गाने हैं कि हाँ ये जो प्रोग्राम है वो काफ़ी नहीं होगा, मगर हम चुन कर लाए हैं एक दो गाने जो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो अगला गाना जो है यहाँ पर है एक मैसेज, नमस्ते जी, ये है सचिन जी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये जो गाना आप सुनना चाहते हैं फ्रॉम द मूवी आज का अर्जुन, ऑफकोर्स आपने दिखा है, तो पिक्चराइज ऑन जया प्रधा एंड अमिताभ बच्चन साहब। और जया प्रदा के साथ अमिताभ बच्चन साहब आज का अर्जुन मूवी में आए थे, इसके बाद शराबी, और शराबी वाला गाना जो है, शराबी फिल्म का गाना जो है, बहुत लोगों ने इसकी मांग की है, हम चलाएंगे कुछ समय बाद। अभी के लिए गोरी है कलाइयाँ, तो ला दे मुझे नई नई चूड़ियाँ। हाँ जी,

खाना सफर जैसे गाने हमें ले जाता है पुरानी राहों पर नॉस्टैल्जिक मोमेंट ऑफ द इंडियन सिनेमा हम चला रहे हैं आज स्पेशल बिग बी बच्चन साहब पर सिर्फ उन पर नहीं मगर उनके एक्ट्रेसेस पर भी जो युगल गाने हैं जो डुएट सॉन्ग्स हैं उनको चला रहे हैं आज और आप लोग जब बात करें हमसे फ़ोन पर या मैसेजेस में हमें दिख रहा है कि आप कितने खुश हो रहे हैं ऐसे गाने सुनकर क्योंकि कुछ ऐसे गाने होते हैं कि बहुत दिन हुए हमने नहीं सुना या फिर ये जो गाने हैं हमें ले जाता है उस वक्त जब हम छोटे थे जब हम स्कूल से लौटते थे जब हम अपने दोस्तों के साथ खेलते थे और रेडियो पर ये गाने चलते थे तो बस आज स्पेशल बिग बी बच्चन साहब साथ में उनकी जो खूबसूरत एक्ट्रेसेस थी उन पर पिक्चर आए कुछ ओनली एंड ओनली डुएट सॉन्ग्स और आपके बता देते हैं कि अभी से लेकर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक यह होगा बच्चन साहब पर पिक्चर आए और इन बिटवीन शायद एक दो बर्थडे सॉन्ग भी अगर आप मना रहे हैं किसी का बर्थडे अगर आपके यहाँ कोई हैप्पी ओकेजन है तो बस इन बिटवीन हम इंक्लूड कर सकेंगे नहीं तो ज्यादातर जो गाने हैं वो होंगे बच्चन साहब के डुएट सॉन्ग्स पर और 2 बजे से 3 बजे तक हम पेश करने वाले हैं तो हमने कहा सोचा कि क्यों ना आज हम काजोल और शाहरुख खान पर पिक्चर डाल कुछ गाने चलाएं 2 बजे से 3 बजे तक स्पेशल 90s वाले गाने तो अभी के लिए बस एक और गाना है फिल्म है कालिया आशा जी की आवाज़ में साथ में किशोर दा तुम साथ हो जब अपने हमें क्या चाहिए और ये गाना जो है माला और जहाँ पर माला जो है माला जी ये गाना कबीर कनील कविश सत्यम शिव केविन और किरण के लिए साथ में सभी जो फैंस हैं बच्चन साहब के और उनकी एक्ट्रेसेस के तो बस ये गाना आपके लिए और ये गाना हमें ले जाएगा समाचार की ओर

0: सभी को नमस्कार आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना से याचना आपको नमस्कार
1: नमस्कार पूनम सभी सुनने वालों को भी नमस्कार सुनिए संक्षिप्त समाचार कल रात पोटरी में एक जानलेवा सड़क हादसा हुआ जिसमें एक राहगीर की मौत हुई ये दुर्घटना रात करीब 8 बजे हुई भामो में वेनिस पुल के पास हुआ एक गाड़ी ओल्ड मोका रोड के निवासी देजिरे कातु से टकरा गई गाड़ी का चालक 28 साल का बताया जाता है स्थल पर पहुंचने पर सामू ने 70 साल के इस व्यक्ति की मौत की पुष्टि की और शव को SSRN ले जाया गया जानकारियों के मुताबिक दुर्घटना के वक्त सड़क साफ थी और मौसम अच्छा था अभी तक कोई भी गवाह सामने नहीं आया है स्थल पर पाए जाने वाले सेफ सिटी कैमरों के दृश्य जल्द ही देखे जाएंगे राष्ट्रपति दफ्तर द्वारा जानकारी दी गई है कि गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल की स्वास्थ्य स्थिति पर फैलाई जा रही खबरें बेबुनियादी हैं और मात्र अफवाहें हैं वे कांडस के विक्टोरिया अस्पताल के कार्डियक सेंटर में मात्र रूटीन चेकअप कराने गए हुए थे और वे स्वस्थ हैं वे अपनी जिम्मेदारियां और अपना काम जारी रख रहे हैं जनता से केवल पक्की जानकारियों पर विश्वास करने की मांग की जाती है फीफा वर्ल्ड कप का आखिरी मैच सबसे बड़ा सबसे खास मैच आज खेला जाएगा फाइनल अर्जेंटीना और स्पेन के बीच 104वां मैच जो न्यूयॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा रात 11 बजे ये मैच आप एमबीसी स्पोर्ट्स यानी एमबीसी 11 और एमबीसी प्ले पर देख पाएंगे विदेश में जॉर्डन में दो अमरीकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका और ईरान के बीच का युद्ध और तेज हो गया है वहां लगातार सातवें दिन मिसाइल और कामिकाज ड्रोन हमले किए गए दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पाए जाने वाले केशम टापू पर भी मिसाइलें दागी गई ये थी अब तक की खबरें थोड़ी देर में शोक समाचार डिस्पेंसरी रोड विच एम एल थियोली में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के श्री इंद्रदेव बंधन जो आत्मा के नाम से ज्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल दिन के 11:30 बजे अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनकी पत्नी नर्मदा बंधन के मकान डिस्पेंसरी रोड विचैमिल थियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए SSS थियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 11:30 AM लासोस कैथोबोन में 59 साल के 59 years old के श्री देवन मर्टन जो नादन के नाम से ज्यादा जाने जाते थे और पैपेजों बेकरी के मालिक थे उनकी मृत्यु हो गई है उनके अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके मकान लासूस कैथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमोतें मोरोश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 1 PM शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है
2: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3
3: Testing 1 2
4: Yeah. कभी सोचा है
5: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
4: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा
5: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना
4: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका
5: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आजे
4: ओपन टू ऑल मॉरिशस बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
5: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक कॉन्फिडेंस एनर्जी और पर्सनालिटी
4: वीडियो हो सकता है हिंदी भोजपुरी तमिल तेलुगु गुजराती मराठी उर्दू या चाइनीज में
5: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
4: और आखिरी तारीख है 26th of July तो कैमरा ऑन कीजिए टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो
5: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे MBC रेडियो पर आपकी आवाज आपका स्टाइल
4: और आपका चांस
5: डोंट मिस इट
6: RM3 रेडियो
3: story, but everybody will sing with me.
6: Okay.
3: Ready? Come on. One, two, three, four.
6: Number

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: 1:11 हुए हैं, संडे का दिन है, 19th of July 2026। क्या हो रहा है आज? बाजार चले गए या घर पर ही है आज? और जब हम स्टूडियो से बाहर थे तो देखा कि मौसम तो सुहाना है, लाजवाब है, आशिकाना है, और बहुत लोग ऐसे में ना घूमने जा रहे हैं। कुछ लोग कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ना बहुत दूर जाना है, लोगों से दूर, कहीं जंगल में मंगल नहीं करना है, बस चलना है, जॉगिंग करना है, वॉकिंग करना है, और अकेले मत जाइयो। अकेले में अगर गुम हो गए तो कौन ढूंढने आएगा? दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, किसी ना किसी को लेकर आप समुद्र किनारे चले जाइए कुछ घंटों के लिए। जो है ताज़ा हवा है, ताज़े जो हवा है उनको लीजिए और साथ में रिलैक्स कीजिए कुछ ना कुछ करने का। यानी कि या फिर ऐसे ही आप घर पर हैं तो बस बाहर आप एक कुर्सी लगा लीजिए, सोफ़ा लगा लीजिए, बस आराम से बैठिए और ज़िंदगी का मज़ा लीजिए, अपने आप के बारे में सोचिए और बस अपने जो दिमाग है ना, तेज़ घोड़े जो है उनको बस आराम दें, और संगीत है तो बस आप रिलैक्स कीजिए। आप सुन रहे हैं सुहाना सफर प्रोग्राम दीविना के संग, और आज का यह सफर जो है पूरी तरह हम अमिताभ बच्चन के अमर डुएट गानों को हम लेकर आए हैं आज। और इतने सारे मैसेजेस आए हैं, इतने सारी फरमाइशें आई हैं, इतने सारे जो हैं जो गाने हम भूल चुके थे, अब आज ये गाने हम चला रहे हैं। बस कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन साहब केवल एक अभिनेता नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की एक ऐसी संस्था है, एक वो है जो जिनकी फिल्मों और गीतों ने पीढ़ियों को जोड़ा है, जेनरेशंस को जोड़ा है। उनकी फिल्मों में रोमांस है, दोस्ती है, दर्द है, ज़िंदगी का दर्शन है, हर रंग देखने को मिलता है। और साथ में उनकी जो हीरोइंस हैं रोमांस कर रहे हैं या फिर उनके साथ जो फैमिली है ऑन स्क्रीन, तो बस उनको देखना अच्छा लगता है। उनकी मुस्कान, उनकी आवाज़ और उनकी अदाकारी के साथ ये जो डुएट सॉन्ग है ना, आज भी उतने ही ताज़ा लगते हैं जितने अपने दौर में थे। बस अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। गोरे नहीं हम काले सही, आप गोरे हैं या काले कोई बात नहीं, आपका दिल साफ होना चाहिए। सफर, हाँ जी, हीरो हीरोइंस की बातें हो रही हैं, और ऐसे में इससे पहले आपने सुना गोरी का साजन, तो श्रद्धांजलि है, ट्रिब्यूट है टू एस जानकी जो हाल ही में दुनिया छोड़ चले, और साथ में श्रीदेवी के साथ जो श्रीदेवी जी हैं अब जिंदगी दुनिया में नहीं है। बस अमिताभ के साथ उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जैसे आज कार्जुन, इंकलाब, खुदा गवाह, इंग्लिश विंग्लिश, आखिरी रास्ता। और साथ में अब जो अगला गाना आप सुनने वाले हैं ये है देश प्रेमी मूवी का गाना, हेमा मालिनी के साथ थे बच्चन साहब।

और इन्होंने एक साथ शोले मूवी में बागबान नसीब, त्रिशूल, सत्य पे सत्ता जैसे मेजर फिल्मों में काम किया, देश प्रेमी, नास्तिक, दोस्त, बाबुल, सिनेमा अंधा कानून, ये सब। और इस संगीत की मांग की है, हमेशा की तरह झटके वे आ जाते हैं यहाँ पर हमसे बात करने के लिए, वो है नवीन जी। नवीन जी हमेशा आशा जी की आवाज़ में गाने चुन कर लाते हैं और आज का जो गाना है नवीन जी हटके हैं, झटके हैं, बस इसको एंजॉय कीजिए। आशा जी की आवाज़ साथ में लक्ष्मीकांत।

0: RM3 Radio. Radio.
1: हाँ जी, वेलकम बैक। यहाँ पर हो रहा है सुहाना सफर प्रोग्राम। आप सबों के सन इस सुहाने सफर में आप सब लोग हमारे हम सफर है, हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस प्रोग्राम सुन रहे हैं मगर मौका नहीं मिलता मैसेज करने के लिए या फिर फोन करने के लिए। कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू अप्रिशिएट टीम आइडियाज।

शाहनशाह मूवी का गाना है और ये जो है एक मैसेज आया है. नमस्ते जी. नमस्ते करुणा जी ऑफ सेबास्टोपोल. Listening to you at full volume. Thank you so so much while preparing lunch. So bon appétit to you. अगर आप मेरे ख्याल से आपका लंच हो ही गया होगा. और I wait eagerly for Sunday to listen to these wonderful songs after one hectic and busy week at work. Thank you so much. और हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपका साथ दें, आपके जो स्ट्रेस है उनको उड़ाने में मदद करें. So ये जगाना है जाने दो फ्रॉम मूवी शहनशाह आपके लिए करुणा जी.

जहाँ जाने का वक्त नहीं है, बस बर्थडे विश करने का वक्त है। आज संडे 19th of July, बहुत से लोग मना रहे हैं अपना बर्थडे और जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और ऐसे में स्पेशल बर्थडे विशेस भेज रहे हैं क्यूपिप की प्यारी सी मीरा माईपत के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ हबी अमित, सन है खुशद, बेटी है आहाना और सभी परिवार की ओर से। साथ में है शुमे ग्रुनी की साधना गुरन सिंह जी ने मनाया अपना बर्थडे लास्ट ट्यूसडे, सो फ्रॉम द होल फैमिली एंड स्पेशली हबी प्रीतम की ओर से। साथ में है नाम जोड़ते हैं आश्विन सवाम का, कटोबोन के हैं और उन्होंने मनाया लास्ट फ्राइडे को अपना बर्थडे, सो ऑन बिहाफ ऑफ द होल फैमिली उनको हैप्पी बर्थडे। May God bless you all, good health, wealth, जो भी आपको चाहिए ज़िंदगी में आप सभी को ये मिले। और ऐसे में हम आपके लिए ये गाना पेश कर रहे हैं फ्रॉम द मूवी बागबान, बच्चन साहब की आवाज़ में, साथ में आगे याग्निक का।

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. जाए 1:43 हुए हैं और एम फ्री रेडियो मनोरंजन से आप जुड़े हुए हैं. थैंक यू सो मच मेरे दोस्त हमारा साथ देने के लिए. आज है ज़बरदस्त म्यूजिक यहाँ पर. अमिताभ बच्चन साहब की बात हो और उनकी एक्ट्रेसेस के अनस्क्रीन रोमांस और डांस हो तो बस हम ऐसे ही बैठ नहीं सकते. हमें तो डांस करना पड़ेगा, हमें तो गाना भी पड़ेगा. तो लिसनिंग टू अस राइट नाउ मोटोको से है माइक और उनके सभी दोस्त और ये गाना सुनना चाहते हैं फ्रॉम द मूवी हम. इसको एंजॉय कीजिए. किमी काटकर बच्चन साहब. सुदेश भोसे साहब साथ में कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ है.

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: सुहाना सफर हैपनिंग राइट नाउ ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन. आज है स्पेशल संडे आफ्टरनून लेजी शो. और अभी ना ये समय जो होता है, बहुत से लोग जब घर पर होते हैं तो बस उनको आराम करना होता है, नींद आती है. बट आई एम श्योर ऐसे गाने सुनकर आप रुक नहीं पाएंगे, आपको गुनगुनाना ही होगा. और हम चाहते हैं कि आप लोग खुश हो, आप खुश रहे, स्वस्थ रहे. और ऐसे में हमारी और आपकी बात होती है तो हम भी तो खुश हो ही जाते हैं. तो बस अगले गाने की ओर बढ़ते हैं. और ये जो गाना है जी हाँ, ये मैसेज आया है करुणा की ओर से. शुमे खुइया की प्यारी सी करुणा है. सो ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंजॉइंग इन किचन, थैंक यू सो मच. और हबी राजेश के लिए यति होल फैमिली. और साथ में नाम जोड़ते हैं उनकी मम्मी जी जो है श्यामा जी, यजना है, यति है, स्पेशली मामी सिबरन, वो एंजॉय ऑल योर प्रोग्राम. तो बस थैंक यू. तो ये जो गाना है, हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें. तो लव यू टू कुगार, थैंक यू. और आपको भी, और कह रही हैं वो सिख है, बीमार है, फिर भी वो ये प्रोग्राम को अप्रिशिएट कर रही हैं. थैंक यू सो सो सो मच. एंड होप कि करुणा जी आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी. एंड लिसनिंग टू अस, प्यारी सी जो नैना है एंड फैमिली, इफ यू आर लिसनिंग द नेक्स्ट सॉन्ग टू यू. और जितने लोग हमारा साथ दे रहे हैं और हमेशा साथ देते हैं, ये जो गाना है फ्रॉम द मूवी अमर अकबर अंतोनी. और आज 12 बजे से अभी तक हमने चलाया उन गानों को जो पिक्चराइज हुआ था बिग बी बच्चन साहब पर, साथ में उनकी जो एक्ट्रेसेस थी ऑन स्क्रीन जोड़ी जो थी. तो बस होप कि ये जो सेगमेंट हैं आपको अच्छा लगा. 2 बजे के बाद 90s वाले गाने होंगे और कुछ गाने होंगे शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी पर पिक्चराइज. फिलहाल मिलते हैं 2 बजे के समाचार के बाद. अभी के लिए ये हो जाए आपके लिए.

जहाँ चलिए इस गाने में नाम जोड़ते हैं ललिता जी ऑफ कालबास। अफसोस समय नहीं मिलेगा 2 बजे से पहले ये गाना चलाने के लिए, बस इसमें गाना जोड़ते नाम जोड़ते हैं ललिता जी का। और वे कह रही हैं माई ग्रैंड चिल्ड्रन हु आर माई प्लेस ड्यूरिंग द स्कूल हॉलीडेज डूइंग माई हाउस चोज बट इट्स नेसेसरी। दीदी जी ऑफकोर्स बच्चों को सिखाना चाहिए, यू नो बिकॉज ऑफ दिस आर बेसिक थिंग्स ऑफकोर्स। सो ये गाना आपके लिए, साथ में 4 बोन के बाबू अनात्वा जी और परिवार के लिए ये गाना।

0: सभी को नमस्कार आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना से याचना आपको नमस्कार
1: नमस्कार पूनम सभी सुनने वालों को भी नमस्कार सुनिए संक्षिप्त समाचार कल रात पोटली में एक जानलेवा सड़क हादसा हुआ जिसमें एक राहगीर की मौत हुई ये दुर्घटना रात करीब 8 बजे हुई भाबों में वेन्यूस पुल के पास हुई एक गाड़ी ओल्ड मुका रोड के निवासी देजिगे कातु से टकरा गई गाड़ी का चालक 28 साल का बताया जाता है स्थल पर पहुंचने पर सामी ने 70 साल के इस व्यक्ति की मौत की पुष्टि की और शव को SSRN अस्पताल ले जाया गया जानकारियों के मुताबिक घटना के वक्त सड़क साफ थी और मौसम अच्छा था सभी तक अभी तक कोई भी चश्मदीद गवाह सामने नहीं आया है स्थल पर पाए जाने वाले सेफ सिटी कैमरों के दृश्य जल्द ही देखे जाएंगे राष्ट्रपति दफ्तर द्वारा जानकारी दी गई है कि गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल की स्वास्थ्य स्थिति पर फैलाई जा रही खबरें बेबुनियादी और मात्र अफवाहें हैं वे कांडोस के विक्टोरिया अस्पताल के कार्डियक सेंटर में जरूर गए हुए थे लेकिन मात्र रूटीन चेकअप के लिए और वे स्वस्थ हैं वे अपनी जिम्मेदारियां और अपना काम जारी रख रहे हैं जनता से केवल पक्की जानकारियों पर विश्वास रखने की मांग की जाती है फीफा वर्ल्ड कप का आखिरी मैच सबसे बड़ा सबसे खास मैच फाइनल आज रात होगा अर्जेंटीना और स्पेन के बीच 104वां मैच जो न्यूयॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा रात 11 बजे ये मैच आप एमबीसी स्पोर्ट्स यानी एमबीसी 11 और एमबीसी प्ले पर देख पाएंगे विदेशी खबरों में जॉर्डन में दो अमरीकी सैनिकों के मारे जाने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध और तेज हो गया वहां लगातार सातवें दिन मिसाइल और कामिकाज ड्रोन हमले किए गए दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पाए जाने वाले केश्म टापू पर भी मिसाइलें दागी गईं ये थी अब तक की खबरें आपके ध्यान के लिए धन्यवाद हमें आ गया जी नमस्कार
2: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: You're listening to RM3 Radio Mana.

जा हो चुका है यहाँ पर दुबचकर 12 मिनट रविवार का दिन है 19 जुलाई और आप सुन रहे हैं 12 बजे से हमारा जो प्रोग्राम है थैंक यू सो मच टू बी कनेक्टेड टू आरएम फ्री रेडियो मनोरंजन देवीना के संग हमेशा हर संडे को स्पेशली हम आ जाते हैं आपका साथ देने के लिए फॉर फ्री आवर्स सो वेलकम बैक इन द थर्ड आवर ऑफ सुहाना सफर जहाँ अब इस सेगमेंट में हम पेश करने वाले हैं एक जो डेडिकेशंस हैं जो रिक्वेस्ट हैं साथ ही बॉलीवुड की उस जोड़ी जो है जिसकी मुस्कान मासूमियत और बेमिसाल केमिस्ट्री इससे 90s के दशक की प्रेम कहानियों को हमेशा के लिए अमर बना दिया शाहरुख खान साथ में काजोल बाजीगर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे करण अर्जुन कुछ कुछ होता है जैसी फिल्मों ने इस जोड़ी को रोमांस का जो है आइकन बना दिया आज भी लोग प्यार से उनको सुनते हैं उनके जो गाने हैं देखते हैं और उनका जो उनकी जो केमिस्ट्री है वाकई लोग जब देखते हैं तारीफ करते रहते हैं दोस्तों जब सरसों के खेतों में राज अपनी बाहें फैलाकर खड़ा होता है और सिमरन उसकी ओर मुस्कुराती हुई बढ़ती हुई जाती है तो ऐसा लगता है मानो प्यार की परिभाषा ही बदल गई हो यही जादू है किंग खान और बॉलीवुड शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी का तो आइए आपने सुना बाजीगर और बाजीगर तो उस गीत से जिसने करोड़ों दिलों को प्यार करना सिखाया तो बस अगले गाने की ओर बढ़ते हैं और आप जुड़े रहिए हमारे साथ 3 बजे तक

या कैसे भूले इस गाने को, कुछ कुछ होता है। अलका याग्निक, उदित नारायण, प्यार की परिभाषा, 90s का जादू। बस इस गाने में हम जोड़ते हैं, इसको डेडिकेट करते हैं, वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं बेल्जियम से विजयंती रघुनंदन, साथ में उनके पति देव जो हैं जसवंत सिंह और उनके जो बेटे हैं रविंदर सिंह और सिमरन सिंह की ओर से ढेर सारी बधाइयां हैं। साथ में हैं विजयंती जी की बहन श्यामा रघुनंदन जी, साथ में उनके भाई साहब हैं जयप्रकाश जी, राम प्रकाश जी, रामराज जी, और बस यही हम

हाँ जी, विमला जी हमारा साथ दे रही है। विमला जी टेक केयर। सभी लोग, बहुत से लोग आजकल उनको बुखार हो रहा है, फ्लू हो रहा है, सो बस आप लोग गर्मा गर्म अभी के लिए जो है चाय पीजिए, इसमें वो अदरक डालिएगा और साथ में हमारे जो गाने हैं ना उनका मजा लीजिएगा। ये रहा आपके लिए विमला जी, आपके परिवार एंड फ्रेंड्स के लिए।

आइकॉनिक मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अब हम शाहरुख खान और काजोल को कुछ डे के लिए अलग करते हैं और अब चलते हैं, यहाँ पर है अलका जी की आवाज़ में, साथ में है सुनी निगम, फिल्म है दुल्हन हम ले जाएंगे, करिश्मा कपूर, अक्षय कुमार। प्यार दिलों का मेला है फिर भी हम क्यों अकेले हैं, बस ये वो ही जानते हैं जो प्यार में डूबे हुए होते हैं, और जैसे कहते हैं भीड़ में भी अकेले पाते हैं अपने आप को, क्योंकि किसी की कमी महसूस होती है। अभी जो गाना है ना, स्पेशली जाता है इसमें ऑस्कर विषय के मनोज सोहन जी के लिए, और ये जो रिक्वेस्ट आई है मनोज जी की वाइफ की ओर से, नजीमा जी, नजीमा सोहन, और जितने बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, जितने लोग अकेले हैं और हमें सुन रहे हैं, डोंट वरी, आप

अकेले हो या ना हो, मगर हम यहाँ पर हमेशा आपका साथ हैं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो रेडियो सुनते हैं. तो बस जितने लोग हैं बीमार हैं, जो बच्चे होते हैं, जो अकेले हैं, बस ये गाना आपके लिए, मनोज सुहन जी की ओर से, नजीमा जी की ओर से, पूरे सुहन फैमिली के लिए भी.

जहाँ इम्तिहान मूवी का गाना है हरीश बाबू बुवासे से आपके खास अनु के लिए चाहत बहुत प्यार का इजहार, और इसके बाद फिर से बैक टू शाहरुख खान एंड काजोल। इसमें नजर आए थे सैफ अली खान साथ में रवीना टंडन।

0: RM3 Radio. Radio.
1: Beautiful music, beautiful gana. झूमते हैं, नाचते हैं और आज का जो प्रोग्राम है बहुत जल्द खत्म होने वाला है. तब तक इसको एंजॉय कीजिए. फिल्म है कभी खुशी कभी गम. इसमें शाहरुख खान और काजल एक दो गाने हम चला रहे हैं. तो बस हम अभी आते हैं. ये गाना जो है स्पेशली माला जी और जहाँ पर वे इस प्रोग्राम को बहुत एंजॉय कर रही हैं. माला जी ये और आपके बच्चों के लिए साथ में पॉइंट डू लास्को से सीता जी आपके बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए, पूरे परिवार के लिए. और साथ में आज है रचना सोहन का बर्थडे. सो ऑन बिहाफ ऑफ हर पेरेंट्स, पूरे फैमिली की ओर से, हमारी ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से बेस्ट विशेस. सुनी निगम अकयाग्निक.

2:52 हुए हैं और एम फ्री रेडियो मनोरंजन से जुड़ने के लिए दिल से शुक्रिया मेरे दोस्त. सो हैप्पी टू हैव ऑल यू ऑन बोर्ड. और 3 घंटों का सफर यूं ही फुर से गुजर गया, मगर आपका साथ रहा, आपसे बातें हुई, आपके मैसेजेस हमें मिले और आपके अप्रिसिएशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो सो सो मच. कभी शरारत, कभी नोकझोंक और कभी दिल की मासूम धड़कन, यही रंग इस जोड़ी को सबसे अलग बनाते हैं. शाहरुख खान और काजोल पर पिक्चराइज एक दो गाने हमने चलाए, साथ में आपके कुछ डेडिकेशंस और रिक्वेस्ट भी हमने चलाए. बस हम आशा करते हैं कि आप लोग खुश हुए होंगे और बस आज के लिए इतना ही. हमारे बाद आएंगे 3 बजे के समाचार के बाद और जी प्रताप सिंह लेकर प्रोग्राम ऐसा भी होता है. अब फिर से खूबसूरत यादें लेकर हम फिर से हाजिर होंगे बहुत जल्द. और खूबसूरत यादें इन गीतों के ज़रिए, इन्हें सुनते ही स्कूल के दिन, कॉलेज की दोस्तियां और पहली मोहब्बत की मीठी यादें ताज़ा हो जाती हैं. बस आज का यह म्यूज़िकल सफ़र यही समाप्त होता है. उम्मीद है कि आपका ये जो सफ़र था सदाबहार गानों का, आपके दिल को भी सुनहरे दौर में पहुंचा दिया होगा. इसी तरह मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और साथ में जुड़े रहिए हमारे MBC रेडियो मनोरंजन के साथ. तो देते हैं आपसे इजाजत, टाइम टू साइन ऑफ. फिर मिलते हैं, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल. फिर मिलते हैं, लव यू ऑल, बाय बाय. जाती हूँ.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। ये एक बड़ी चिकित्सा उपलब्धि है और देश के पूर्वी क्षेत्र के लिए पहली ऐसी सुविधा भी। फ्लक के साज अस्पताल में उच्च टेक्नोलॉजी वाला

0: रेडियोलॉजी मशीन लगाई गई है। इसका उद्घाटन 8 जुलाई को कई अतिथियों की उपस्थिति में किया गया। अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये उपकरण रेडियोलॉजिकल जांच को अधिक सटीकता के साथ और कम समय में पूरा करने में सक्षम है। इससे आपात स्थिति में तुरंत जांच कराया जा सकता है, जिससे जल्द से जल्द इलाज भी शुरू किया जा सकता है। साल 2050 तक दुनिया भर में सालाना तौर पर कैंसर के मामलों की संख्या 35 मिलियन तक दर्ज होने की संभावना बनी हुई है। कैंसर पर 2026 की वैश्विक रिपोर्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों से स्क्रीनिंग और इलाज के लिए कदम तेज करने की मांग की है। फीफा वर्ल्ड कप का आखिरी मैच, सबसे बड़ा सबसे खास मैच, फाइनल आज रात होगा अर्जेंटीना स्पेन के बीच। 104वां मैच जो न्यूयॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा रात 11 बजे। ये मैच आप एमबीसी स्पोर्ट्स यानी एमबीसी 11 और एमबीसी प्ले पर देख पाएंगे। विदेश में जॉर्डन में दो अमरीकी सैनिकों के मारे जाने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध और तेज हो गया। वहां लगातार सातवें दिन मिसाइल और कामिकाज ड्रोन हमले किए गए हैं। दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पाए जाने वाले केश्म टापू पर भी मिसाइलें दागी गई हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आ गया डीजे, नमस्कार, शुभ।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Up center, 95.5. North, south, 95.6. 95.6. East, west, 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
5: Continuous music.

जालिम है ये दुनिया, जालिम है यहाँ के लोग। इंसान के मन में क्या है, उसके नियत में क्या है, कौन जान सकता है। वो सोचता कुछ और है पर करता कुछ और है। कभी कभी इंसान हैवान बन जाता है। वो क्या से क्या हो जाता है ये कोई नहीं जान सकता। लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइज एंड गर्ल्स, आप सभी को अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। प्रस्तुत है अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। और 94.5 और 6.98 पर अभी से लेकर शाम के 4 बजे तक और एम फ्री MBC और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर। चले आइए सस्पेंस और मिस्ट्री की दुनिया में, जहां पर कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। वेलकम, सुस्वागतम।

दोस्तों, इस दुनिया में होने को कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, कभी कभी जो बात हम सोच नहीं सकते, हमारी सोच के बाहर है, वो बात हो जाती है। सब मैं कैसे घटना के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो घटी है मॉरिशस में। बहुत साल पहले की बात है, मॉरिशस के दक्षिण में एक गांव है जिसका नाम है रिवियो जिपोस्ट। वहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत

घटना घटी थी। उन दिनों मुझे याद है मैं मोहताबा सरकारी स्कूल में पांचवी कक्षा का स्टूडेंट था। सो उस गांव में दादून नाम का एक व्यक्ति, उसने एक लड़की के गले को काट कर बड़ी ही बेरहमी से उसे जान से मार डाला। और बेशक दूसरे दिन दादून जिस व्यक्ति ने लड़की को मारा था उसका शव पाया गया जुरीबा के गन्ने के खेतों में, और उसकी भी जान किसी ने ले ली थी। और फिर ऐसा हुआ कि ऐसा लोग कहते हैं कि उस लड़की की जो मृत्यु के बाद वहाँ पर रिवेज पोस्ट में जो है काफ़ी लोग डर छाने लगा चारों ओर। सो भारत से पंडितों को आचार्यों को बुलाया गया वहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए ताकि उस लड़की की आत्मा को शांति मिल सके। सो मुझे भी याद है कि उस दिन उन दिनों लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं थी, अध्यापक बस में सवार करते थे। सो जितने अध्यापक रिवेज पोस्ट से मोहताबा गवर्नमेंट स्कूल आए थे सो उनके चेहरे पर एक डर था, यू नो दे वर सो हाउ टू से पैरालाइज्ड विद फियर। और जैसे वो स्कूल में आए सो पसीना पसीना हो गए और उन्होंने बताया किस प्रकार उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति ने उस लड़की के सर को अलग करके वो लोगों को दिखा रहा था कि देखो मैंने एक लड़की का गला काट दिया। सो क्या ऐसा हो सकता है दोस्तों कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का गला काट कर उसकी जान ले ले। ये घटना घटी है दोस्तों रिवेज पोस्ट में और उस व्यक्ति का नाम था दादून। मेरे अनुसार अगर एक व्यक्ति के सर में पाप चढ़ जाता है तभी वो ऐसा काम कर सकता है। कितनी बेरहमी से उसने एक लड़की के गले को छुरी से काट कर उसकी जान ले ली। सो ऐसी घटनाएं घटती रहती है दोस्तों, केवल दुनिया में नहीं मॉरिशस में भी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसे मैं बात कर रहा हूँ। आई स्टिल रिमेम्बर मैं उन दिनों स्कूल में स्टूडेंट था। सो जब अध्यापक ने हमें बताया सो हम भयभीत हो गए। उन दिनों फेसबुक नहीं था, टिकटॉक ये सब नहीं था, केवल रेडियो था। और रेडियो पर न्यूज़ में आया था कि एक व्यक्ति ने, दादून नाम की व्यक्ति ने किस प्रकार से बेरहमी से एक लड़की की जान ले ली। मैं अब जब भी यह घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, क्या दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो लोगों की जान ले सकते हैं? दुनिया में ऐसा भी होता है दोस्तों, ऐसा भी होता है।

अद्भुत सनसनी खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर अभी भी आपने रेडियो सेट ऑन किया है तो बता देते हैं कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ऐसा भी होता है ऑन ऑरियन फ्री रेडियो मनोरंजन, एमबीसी रेडियो मनोरंजन 94.95/96.98.2 MHz पर। और दोस्तों, अब हम जिक्र करने वाले किसी घटना के बारे में जो मॉरिशस में घटी थी। यस, 10 फरवरी 1994 में मॉरिशस में एक जबरदस्त तूफान ने प्रहार किया था, चक्रवात होलांडा तूफान। इसे मॉरिशस के इतिहास के सबसे विनाशकारी चक्रवाती तूफानों में माना जाता है और इसका प्रभाव हुआ था हमारे देश में और लगभग 215 से 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की तेज हवाएं चली थी और लगभग 450 से अधिक घर नष्ट हो गए थे, लगभग 1500 लोग बेघर हो गए थे और गन्ने की फसल सहित कृषि को भारी नुकसान पहुंचा था। बिजली की लाइन और संचार व्यवस्था कई स्थानों में ठप हो गई थी और एक महीने तक मॉरिशस ब्लैकआउट में था। स्कूल कॉलेज सब बंद थे एक महीने तक। सड़कों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिरे हुए थे जिससे यातायात बाधित हुआ और आर्थिक नुकसान करोड़ों डॉलर के बारे में बताया जाता है। इस चक्रवाती तूफान होलांडा तूफान में 2 लोगों की मृत्यु हुई थी और कई लोग घायल भी हुए थे। चक्रवात होलांडा तूफान ने मॉरिशस के लोगों को प्राकृतिक आपदा के प्रति अधिक सतर्क रहने की सीख दी और जब यह तूफान आया तो काफ़ी तबाही मची थी चारों ओर। और जब ब्लैकआउट हुआ तो लालमाटी गांव में लोगों ने कहा था कि लुगारू आ गया। अब लुगारू क्या होता था कि 6 बजे के बाद लोगों का कहना है कि जो पशु होते थे, कीड़े होते थे, वो जो है किसी भी रूप धर कर घर के अंदर आते थे और लोगों को डराते थे, धमकाते थे। कुछ लोग कहते थे कि छिपकली जो है वो एक अपना रूप बदल देती थी और लोगों को डराती थी और जो बिल्ली थे या कुत्ते थे सो वो भी रूप बदल कर लोगों को डराते थे। और लोग क्या करते थे कि 6 बजे के बाद

अपने घर के दरवाजे सब बंद कर देते थे और लोग भयभीत थे और लोगों का कहना था कि रात को अलग अलग अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी लुगारू के आने से और लुगारू से बचने के लिए लोग अपने आंगन में प्योंदेन के पेड़ को बोते थे सो ऐसी मान्यता थी कि अगर आपके द्वार में प्योंदेन का पेड़ है तो भूत प्रेत नहीं आएगा सो दैट वॉज इन लालमाटी

थे और शाम के वक्त रात के वक्त कोई घर से निकलता नहीं था कहीं लुगारू नजर ना जाए. सो दैट वाज ड्यूरिंग द साइक्लोन तूफान होलांडा के गुजरने से ऐसा हुआ था. जरा सोचिए, एक तूफान आपके देश में आया है और उस तूफान के बाद लोग डरने लगे, लोग कहने लगे कि भूत आ रहा है या लुगारू आ रहा है, तो लोग कैसे जिएंगे आप बताइए. इट साउंड्स अ बिट बिजार, डिफिकल्ट है थोड़ा सा मानना, पर ऐसा हुआ है और ये न्यूज़ में भी आया था और जो न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ में भी आया था कि लोग कहते थे कि लालमाटी गांव में ब्लैकआउट के कारण जो है लुगारू यानी कि भूत प्रेत घरों में प्रवेश कर रहे थे. सो जो लोग काफ़ी डरे हुए थे. हम तो कहते हैं कि भूत प्रेत से नहीं डरना चाहिए, जिंदा इंसान से डरना चाहिए, क्योंकि आजकल इंसान इंसान के खून का प्यासा हो गया है. अरे भूत प्रेत तो क्या होते हैं, वो लोग तो मर जाते हैं, आत्मा तो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर पर प्रवेश कर जाती है, पर जो लोग जिंदा होते हैं उनसे डरना चाहिए क्योंकि वही लोगों को चोट पहुँचाते हैं, लोगों का खून करते हैं. दुनिया में ऐसा भी होता है दोस्तों, ऐसा भी होता है.

उस समय बहुत से लोग हमें इंटरनेट पर सुन रहे हैं बाय लॉगिंग द वेबसाइट www.mbcradio.tv फिर क्लिक करें लिसन और एमफ्री रेडियो मनोरंजन सो देश देश विदेश से भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए और आप सुन रहे हैं अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम ऐसा भी होता है और जय प्रताप सिंह के साथ दोस्तों आप ये तो आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ बीमारियां हैं जो जानलेवा है जैसे कि कैंसर है डायबिटीज है और एड्स जिसे हम सीधा कहते हैं पर क्या आपको पता है कि कैंसर बीमारी अगर स्टेज वन पर हो तो उसका इलाज किया जा सकता है लोग कैंसर से बच सकते हैं जी हाँ आपने सही सुना और कहते हैं कि जो दो प्रकार की कैंसर होते हैं एक मेल कैंसर और फीमेल कैंसर सो जो मेल कैंसर होता है पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है कि वो ठीक हो जाए पर अगर फीमेल कैंसर है सो बचना ज़रा मुश्किल है क्योंकि फीमेल कैंसर जो है मल्टीप्लाई होता है और बॉलीवुड के दो ऐसे जाने माने बॉलीवुड स्टार हमारे बीच आज हैं जिन्हें ये बीमारियां ये कैंसर की बीमारी हुई थी दैट वाज मनीषा कोइराला एंड सोनाली बेंद्रे दोनों अभिनेत्रियों की जो कैंसर दोनों अभिनेत्रियों की कैंसर से लड़ाई लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है हालांकि यह समझना आवश्यक है कि कैंसर का इलाज केवल आधुनिक चिकित्सा यानी कि सर्जरी कीमियोथेरेपी रेडियोथेरेपी टैगेट थेरेपी इम्यूनोथेरेपी आदि और विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखभाल में ही संभव है मनीषा कोइराला की कैंसर से लड़ाई कैंसर का प्रकार था ओवेरियन अंडकोश कैंसर बीमारी का पता कैसे चला 2012 में उन्हें लगातार थकान पेट फूलना भूख कम लगना और पेट में दर्द जैसी समस्याएं होने लगी जांच कराने के बाद पता चला कि उन्हें ओवेरियन कैंसर है और अमेरिका के न्यूयॉर्क में विशेषज्ञ डॉक्टरों से इलाज कराया और कैंसरग्रस्त उक्तों को हटाने के लिए सर्जरी की गई उसके बाद कई चरणों में कीमियोथेरेपी दी गई ताकि शरीर में बची कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जा सके इलाज के दौरान उन्हें उनके बाल झड़ने लगे उनके सर के सारे बाल झड़ गए थे कमजोरी हो रही थी और मतली और थकान और समस्याओं का सामना करना पड़ा नियमित मेडिकल चेकअप कराती रही मनीषा कोइराला पौष्टिक भोजन योग और हल्का व्यायाम करती रही मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया और सकारात्मक सोच बनाए रखी आज वे कैंसर जागरूकता अभियान में भी जुड़ी है और आज उसे कैंसर नहीं है वो कैंसर से ठीक हो गई है यानी कि अब वो बीमार बिल्कुल नहीं है सो हमने जिससे बताया कि बहुत से केसेस में लोगों की जान जाती है पर कुछ ऐसे केसेस जहां लोगों की जान बच गई जैसे कि अभी हमने बताया मनीषा कोइराला और दूसरे स्थान पर हैं सोनाली बेंद्रे जहाँ उन्हें भी यह बीमारी हो गई थी कुछ साल पहले और बीमारी का पता उन्हें चला 2018 में स्वास्थ्य संबंधी जांच के दौरान उन्हें कैंसर का पता चला उसके बाद उन्होंने यह जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा की न्यूयॉर्क विशेषज्ञ कैंसर अस्पताल में उपचार कराया गया कीमियोथेरेपी और अन्य आवश्यक कैंसर उपचार दिए गए डॉक्टरों की सलाह के अनुसार इलाज पूरा किया गया इलाज के दौरान उन्होंने अपने बाल कटवा दिए क्योंकि कीमियोथेरेपी से बाल झड़ने लगते हैं परिवार विशेषकर उनके पति और बेटे का भावनात्मक सहयोग उन्हें मिलता रहा नियमित फॉलोअप और स्कैन कराती रही धीरे धीरे सामान्य जीवन और काम पर लौटी स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाए और कैंसर से जूझ रहे लोगों की प्रेरित किया सो दोनों की सफलता के प्रमुख कारण है बीमारी का समय पर निदान अनुभवी

अनुभवी कैंसर विशेषज्ञ से इलाज, सर्जरी और कीमियोथेरेपी जैसे वैज्ञानिक उपचार, उपचार का पूरा कोर्स पूरा करना, नियमित जांच और फॉलोअप, परिवार और मित्रों का भावनात्मक सहयोग, संतुलित आहार, योग साधना, पर्याप्त आराम और हल्का व्यायाम, सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण और धैर्य। मनीषा कोइराला और सोनाली बेनरे दोनों ही रिकवरी इस बात का उदाहरण है कि कैंसर का इलाज संभव है। जी हाँ, कैंसर से लोगों को बचाया जा सकता है, कैंसर का इलाज है दुनिया में, विशेषकर यदि समय पर पहचान हो और सही चिकित्सा उन्हें मिली। हर मरीज का कैंसर अलग होता है, इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति का इलाज अपने आप पर लागू नहीं किया जा सकता। कैंसर का उपचार हमेशा विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। सो खुशी की बात है कि मनीषा कोइराला और सोनाली बेनरे ने जो है दे डिड नॉट लूज होप, डिड नॉट लूज करेज। चाहे उन्हें कैंसर हो गया था, उनके सर के बाल झड़ने लगे थे, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने हिम्मत नहीं तोड़ा और आज वो दोनों स्वस्थ है और अपने जीवन में खुश है। सो दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि कोई परिवार को कैंसर लेवल 1 हुआ है, सो आप उन्हें कहिएगा कि उनका इलाज हो सकता है। जी हाँ, मेडिकल एडवांसेस है, मेडिकल दुनिया में बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो उसका इलाज कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा भी होता है दोस्तों, दुनिया में ऐसा भी होता है, दुनिया में चमत्कार भी होता है कि नहीं।

आज तो कई सालों से वैज्ञानिक लोगों को सतर्क करते आ रहे हैं कि यह जो क्लाइमेट चेंज है इसके कारण बहुत से खतरा हो सकती है। यस, जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले सालों में कई द्वीप समुद्र के पानी में डूब सकते हैं। यह बात 100% सच है और रिसर्च खोजकार यही बताते हैं। हाँ, जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ निम्न ऊंचाई वाले लो लाइंग द्वीपों का पर समुद्र का पानी चढ़ने का खतरा बढ़ रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि सभी द्वीप अचानक समुद्र में डूब जाएंगे, लेकिन कई द्वीपों पर बाढ़, तटीय कटाव और खारे पानी के प्रवेश जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही है और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। पृथ्वी के गर्म होने से हिमनद, ग्लेशियर और ग्रुवीय बर्फ पिघल रही है। गर्म होने पर समुद्र जल फैलता जाता है और इन दोनों कारणों से समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तेज लहरें और तूफान समुद्र तटों की रेत को बहा ले जा रही है। इससे द्वीपों का आकार धीरे धीरे छोटा हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ क्षेत्रों में अधिक तीव्र चक्रवात, तूफान, लहरें आने से का खतरा बढ़ सकता है और इससे घरों, सड़कों और खेतों को नुकसान पहुंच सकता है और समुद्र का पानी मीठे पानी के स्रोतों में घुस सकता है। इससे पीने के पानी और खेती पर बुरा प्रभाव हो सकता है। सबसे अधिक जोखिम वाले द्वीप जो समुद्र में डूब सकते हैं वो है मालदीव आइलैंड्स। यस, मालदीव तो बहुत खूबसूरत है पर धीरे धीरे यह जो द्वीप है एक दिन पानी में, समुद्र के पानी में समा जाएगा। ये मेरा कहना नहीं है, मौसम दुनिया भर के मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जो द्वीप डूबने वाले हैं आने वाले साल में वह है मालदीव आइलैंड्स, टुवालू आइलैंड्स, किरीबाती और मार्शल आइलैंड्स। इन देशों की औसत ऊंचाई समुद्र तल से बहुत कम है, इसलिए ये विशेष रूप से संवेदनशील है। क्या मॉरिशस भी खतरे में है? मॉरिशस के पूरी तरह से डूब जाने की संभावना निकट भविष्य में नहीं है क्योंकि इसका अधिकांश भाग समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा है। ये तो अच्छी बात है पर जो मालदीव आइलैंड्स है, दैट्स फॉर श्योर, एक दिन वो पानी में डूब जाएगा और तटीय क्षेत्रों में कटाव बढ़ सकता है। प्रवाल भीतियाँ, कोरल रीफ्स को नुकसान हो सकता है। समुद्र तटीय बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है और पर्यटन उद्योग प्रभावित हो सकता है। और बचाव के उपाय क्या है? ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा, सौर और पवन का उपयोग बढ़ाना, मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों का संरक्षण, तटीय सुरक्षा, दीवारें और बेहतर शहरी योजना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जलवायु अनुकूल भी योजनाएं। सो जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है जिससे कई छोटे और निचले द्वीपों पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। सभी द्वीप डूब जाएंगे ऐसा कहना सही नहीं है, लेकिन यदि वैश्विक तापमान बढ़ता गया और समुद्र का स्तर बढ़ता गया तो कई तटीय क्षेत्रों और छोटे द्वीपों देशों के सामने भविष्य में बड़ी चुनौतियाँ आ सकती है। सो वी हैव टू टेक आवर प्रिकॉशंस। ये कहते हैं कि प्रदूषण ना करें और यह जो प्रदूषण होता है वो कंट्रीब्यूट करता है क्लाइमेट चेंज को, ग्लोबल वार्मिंग को। सो बहुत से ऐसे आइलैंड्स हैं जो डूब सकते हैं। सो अभी आप अपने जो मैप है उस पर आप देखते हैं कई देश है और कई आइलैंड्स है पर शायद 20 सालों में 30 सालों में छोटे छोटे आइलैंड समुद्र के पानी में हमेशा हमेशा के लिए समा जाएंगे। दुनिया में ऐसा हो सकता है दोस्तों,

ऐसा हो रहा है, समुद्र का लेवल हर साल बढ़ रहा है और इंडियन ओशन में बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं, टापू है जो खतरे में हैं। और अगर क्लाइमेट चेंज चलता रहा, ग्लोबल वार्मिंग और इंडियनों का प्रभाव होता रहा, सो वह दिन दूर नहीं जब बहुत सारे आइलैंड्स हमेशा के लिए समुद्र में समा जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए।

दोस्तों रोज सुबह जब हम जागते हैं तो हम सूर्य नमस्कार करते हैं सूर्य को देखते हैं द सन व्हाट इज द सन ये सन आखिर सूर्य क्या है सो वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जा सकता है चलिए हम आपको बताते हैं सो नासा के अनुसार सन सूर्य क्या है उसके अनुसार यह एक मध्यम आकार का तारा है द सन इज ए स्टार और हमारे सौरमंडल में सोलर सिस्टम का केंद्र है और इसके चारों ओर पृथ्वी सहित सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं कैन यू इमेजिन सभी जो ग्रह है सभी जो पृथ्वी है वो इसकी परिक्रमा जो है करते हैं और सूर्य का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले गैस और धूल के एक विशाल बादल से हुआ था गुरुत्वाकर्षण के कारण यह बदलाव सिकुड़ता गया और सूर्य का जन्म हुआ और मुख्य रूप से दो गैसों से बना है सूर्य एक है हाइड्रोजन लगभग 74% और दूसरा है हीलियम यानी कि लगभग 24% शेष 2% में ऑक्सीजन कार्बन लोहा नियन आदि तत्व है सूर्य ऊर्जा और कहते हैं कि सूर्य के केंद्र उसके को में अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण नाभिकीय संकलन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन भी होता है चार हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु बनाते हैं इस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है यही ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा के रूप में पृथ्वी तक पहुँचती है सूर्य का तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है बाप रे बाप इतनी गर्मी है सूरज में उसका सतह फोटोस्फीयर है लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस कोरोना बाहरी वायुमंडल लगभग 10 लाख है 10 लाख डिग्री सेल्सियस है और उससे भी अधिक सूर्य के मुख्य भाग है उसका को जो उसका जहां ऊर्जा बनती है फिर रेडिएटिव जोन जहां ऊर्जा बाहर की ओर बढ़ती है फिर कन्वेक्टिव जोन जहां पर गर्म गैसों ऊपर नीचे घूमती है और फोटोस्फीयर सूर्य की दिखाई देने वाली सतह क्रोमोस्फीयर सतह के ऊपर की परत और कोरोना सबसे पहली परत जो सूर्य ग्रहण को के समय दिखाई देती है और पृथ्वी के लिए सूर्य का महत्व क्या है कि प्रकाश और गर्मी का मुख्य स्रोत हमें सूरज देता है पौधों में प्रकाश संकलन यानी कि फोटोसिंथेसिस संभव हो सकता है सूर्य के कारण और मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है ऊर्जा और यह ऊर्जा हमें सूर्य देता है नासा के अनुसार लगभग 5 अरब वर्ष बाद सूर्य के केंद्र का हाइड्रोजन ईंधन समाप्त होने लगेगा तब वह लाल दानव यानी कि रेड जायंट बन जाएगा इसके बाद वह अपनी बाहरी परतें छोड़कर अंततः श्वेत बौना यानी कि वाइट ड्वार्फ बन जाएगा क्या बात है रोचक तत्व ये हैं कि सूर्य का व्यास लगभग 13.9 लाख किलोमीटर है सूर्य का द्रव्यमान पूरे और मंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.8% है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लेता है नासा के अनुसार सूर्य एक सामान्य लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण तारा है जिसकी ऊर्जा नाभिकीय संकलन से उत्पन्न होती है यही ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन का को संभव बनाती है अगर सूरज की किरणें धरती पर ना आए तो धरती पर कुछ भी जीवित नहीं बचेगा सो हमें सूर्य की किरणें चाहिए और सूर्य जो है एक आग का गोला है उस पर कोई नहीं जा सकता जो भी जाएगा वो जल जाएगा क्योंकि वहाँ का तापमान बहुत बहुत अधिक है सो यही सूर्य सुबह को हमें जो है प्रकाश देता है उजाला

देता है और इसी सूर्य के कारण फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होता है पौधों में, है कि नहीं। सो कहते हैं ना कि सूर्य सुबह उगता है और शाम को डूब जाता है। अब जब आप सूरज को देखेंगे आसमान में तो आप सोचेंगे भाई क्या इतनी सारी चीज़ें हैं, वाह भाई वाह, दुनिया में ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। वैज्ञानिक रूप से हम इसे एक तारा कहते हैं, पर रिलीजियस रूप से हम इसकी पूजा करते हैं। लोग सूर्य को सूर्य भगवान कहते हैं, उसका उसकी पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। वेल, आप चाहे पूजा करें या ना करें, बट द सन विल ऑलवेज बी देयर, और वो हमेशा, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ऐसा भी होता है, ऐसा ही होता है। और जितने भी लोग इस प्रोग्राम को बहुत प्यार से सुन रहे हैं और सूर्य के बारे में सोच रहे हैं कि सूर्य एक तारा है, सो यस द सन इज अ स्टार, सो एज यू आर, आप भी तो स्टार है। जितने प्यारे प्यारे लोग हमें सुन रहे हैं, ये गाना रेडियो मनोरंजन के सभी दोस्तों के नाम जो सुन रहे हैं, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है।

0: हम किस गली जा रहे हैं जी हाँ हम उस गली जा रहे हैं जहाँ सर आए थे वहीं पर जा रहे हैं सो ऐसा भी होता है कार्यक्रम अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होने जा रहा है कुछ क्षणों में शाम के 4 बजने वाले हैं 4 बजे आप सुनेंगे फ्लैश न्यूज़ के बाद फिर गजलें प्रोग्राम डॉक्टर पूनम के साथ शाम के 3 बजे से अभी तक आप लोगों ने हमारा साथ दिया थैंक यू वेरी मच आशा करते हैं कि आपका ज्ञान का भंडार ज़रूर बढ़ा होगा हमारी आपकी मुलाकात होगी ट्यूसडे की रात को मंगलवार की रात को 9 बजे से 11 बजे
1: Center 95.5 North South 95.6 95.6 East West 98.2
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio Manoranjan Radio
3: Your kind of music all day all night
4: Baj rahe hain सुनते समाचार यशना जी के साथ नमस्कार
5: नमस्कार संजय सभी सुनने वालों को भी नमस्कार सुनिए संक्षिप्त समाचार ये एक बड़ी चिकित्सा उपलब्धि है और देश के पूर्वी इलाके के लिए पहली ऐसी सुविधा भी प्लक के साज अस्पताल में उच्च टेक्नोलॉजी वाला रेडियोलॉजी मशीन लगाई गई है इसका उद्घाटन 8 जुलाई को कई अतिथियों की मौजूदगी में किया गया अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये उपकरण रेडियोलॉजिकल जाँच को अधिक सटीकता के साथ और कम समय में पूरा करने में सक्षम है यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए जाने के 20 साल बाद अप्रवासी घाट ने इस सालगिरह को एक नए लक्ष्य के साथ मनाया है यादों को संजोए कर रखना और साथ में मॉरिशस की विरासत को

0: महत्व देना। इस अवसर पर कई परियोजनाओं का ऐलान किया गया। आज सुबह आयोजित एक विशेष समारोह में नए मराठी पुरोहितों को उनका सर्टिफिकेट दिया गया। कुल 52 लोग जिनमें पुरुष, महिलाएं और कई नौजवान शामिल हैं। पालमा मराठी सभा में इसका आयोजन किया गया। इसका मकसद है पीढ़ी दर पीढ़ी मराठी संस्कृति को बढ़ावा देना। फीफा वर्ल्ड कप का आखिरी मैच, सबसे बड़ा सबसे खास मैच, फाइनल आज रात होगा। अर्जेंटीना और स्पेन के बीच 104वां मैच जो न्यूयॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा। रात 11 बजे ये मैच आप देख पाएंगे एमबीसी स्पोर्ट्स यानी एमबीसी 11 और एमबीसी प्ले पर। विदेश में जॉर्डन में दो अमरीकी सैनिकों के मारे जाने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज हो गया है। वहां लगातार सातवें दिन मिसाइल और कामिकाज ड्रोन हमले किए गए। दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। पायुत वाक्वामी दो महीने की, 2 month ओल्ड शिशु मिशिका संपत की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 4:30 बजे उनके पिता कृष्णा संपत के मकान पायुत वाक्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मेल की श्मशान भूमि दी जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 4:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: On NBC Play.

0: नमस्ते आदाब दोस्तों, 4:11 हो चुके हैं और हम चला रहे हैं आप ही का बहुत ही पसंदीदा प्रोग्राम फिल्मी गजलें। लिखते हैं, हर गजल सिर्फ अल्फाज नहीं होती, उसमें किसी का इंतज़ार होता है, किसी की याद होती है और कभी कभी किसी की अधूरी मोहब्बत की खामोशी होती है। ये बहुत बड़े बड़े लोगों ने लिखा है, इसको समझना इतना आसान नहीं है, इसीलिए आज हमने इसे आसान करने के लिए आपके लिए बहुत सारी गज़लें पसंद की हैं जो हमारी पसंद की हैं, पर हम चाहते हैं कि आप उसे दिल से सुनिए। ये एक घंटा हम देंगे सिर्फ फिल्मी गज़लों को और मैं हूँ आपके साथ पूनम। इंजॉय कीजिए अपना RM3 रेडियो मनोरंजन पर फिल्मी गज़लों का प्रोग्राम।
1: RM3 रेडियो

0: 4:18 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं अपने ही प्रोग्राम फिल्मी गज़लों के साथ। आज हम बात करेंगे सबसे एक ऐसे शायर की जिनका नाम था मिर्ज़ा गालिब। उर्दू शायरी के वो नाम है जिनकी गज़लों में मोहब्बत, तन्हाई और ज़िंदगी के गहरे एहसास बसते हैं। आज भी उनके अल्फाज उतने ही ताज़ा और महसूस किए जाते हैं। लिखते हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। वाह साहब, क्या लिखा है, कितनी खूबसूरती से इंसान के दिल की बात कह दी। कुछ ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं और कुछ बस याद बनकर साथ चलती हैं। शायद इसी का नाम जिंदगी है।
1: RM3 Radio.

0: नजर।
1: 4:24 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं अपने ही प्रोग्राम फिल्मी गजलों के साथ। आप सभी का दिल से धन्यवाद जो अपने प्यार और मोहब्बत के साथ इस महफिल का हिस्सा बने हुए हैं। चाहे आपने हमें व्हाट्सएप पे संदेश भेजा हो या अपने कॉल्स के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए, हम तो बस इतना ही कहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। RM3 हमेशा आपके साथ, हर कहते ना हर साथ के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जब हम फिल्मी गज़लों का प्रोग्राम चलाते हैं, हमें उम्मीद होती है कि आपको ये प्रोग्राम भी अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो हम गज़लों के अंदर जो शायरी सुनाते हैं, उन शायरों की जिनकी बहुत सी बातें अनोखी होती हैं, और वो नॉर्मली हमारे को अपनी दुनिया में, ज़िंदगी में वो इंसान, वो शायरी मिल नहीं पाती, तो चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। ये पसंद जो है, जिस जो भी हम गज़ल चलाएंगे वो किसी की खास पसंद है और हम उन्हीं के लिए ये स्पेशल डेडिकेट करते हैं।
0: RM3 Radio.

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: Yo, hello. Testing. Testing 1 2.
2: Yeah. कभी सोचा है
3: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
2: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
3: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
2: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
2: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
3: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
2: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
3: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
2: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
2: और आपका चांस।
3: डोंट मिस इट।
0: RM3 Radio.

0: 4:42 हुई है दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं अपने ही प्रोग्राम फिल्मी गजलों के साथ और मैं हूं इस समय आपके साथ पूनम। एक ऐसे शायर जिनका नाम है नौशी गिलानी लिखते हैं, तेरी यादों की खुशबू आज भी साथ चलती है, तेरी यादों की खुशबू आज भी साथ चलती है, खामोश शमों में दिल से बात करती है, फासले चाहे जितने भी बढ़ जाएं, फासले चाहे जितने भी बढ़ जाए, मोहब्बत अपनी राह खुद चुनती है। कुछ रिश्ते सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि वो हर रोज़ साथ नहीं होते, बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं, फिर भी हर रोज़ महसूस ज़रूर होते हैं। उनकी यादें उनके साथ होती हैं, उनकी बातें उनके साथ होती हैं और शायद यादों की अपनी एक प्यारी सी दुनिया होती है और उस यादों की जो दुनिया होती है उसी को तो हमें याद रखना होता है। और इसीलिए कहते हैं गज़लें अपने आप चुनकर सामने आती हैं और चुनते हुए गज़लें खुद कहती हैं कि हमें बताओ, हमें सुनाओ, क्योंकि हमारे बीच में किसी ना किसी की याद साथ जुड़ी हुई है।
1: RM3 Radio.

0: नजर।
1: जब बात होती है शायरों की या शायरा की तो सबसे बड़ी बात होती है कि उनके एहसास कैसे हैं। वैसे एक ऐसी शायरा जिनका नाम है अदा जाफरी, उर्दू की प्रतिष्ठित शायराओं में से गिनी जाती हैं। उनकी रचनाओं में सिर्फ मोहब्बत, खामोशी और दिल के एहसास बड़ी नज़ाकत से दिखाई देते हैं। लिखती हैं, कुछ रिश्ते लफ्ज़ों से नहीं एहसासों से चलते हैं, कुछ रिश्ते लफ्ज़ों से नहीं एहसासों से चलते हैं, कुछ लोग बिछड़ कर भी दिल के पास रहते हैं। वक्त बदल जाए, मौसम बदल जाए, सच्ची मोहब्बत के रंग कहाँ बदलते हैं। क्या खूबसूरत ये एहसास है और कितनी खूबसूरती से लिखा है। मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबी शायद यही होती है कि उसे हर वक्त साथ रहने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोग दूर होकर भी दिल की धड़कनों में हमेशा बसते हैं, और जो बसते हैं उन्हें कौन निकाल सकता है।
0: RM3 Radio.

0: RM3 Radio.
1: तो दोस्तों फिल्मी गज़लों में आज की ये महफिल यहीं तक, उम्मीद है आज के अल्फाज, आज के अशार और आज के नगमे आपके दिल में अपनी एक खास जगह बना गए होंगे। अब आज की रात का इंतज़ार कीजिए क्योंकि स्पेन एंड अर्जेंटीना के बीच में खेला जाएगा एक फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ग्रैंड फिनाले, तो देखना मत भूलेगा और अपनी फेवरेट टीम को पूरे जोश के साथ सपोर्ट कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं थी आपके साथ पूनम, नमस्ते आदाब, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी बात सुन पाएंगे आप शीतल जी का कार्यक्रम यादें और सुनते रहे RM3 रेडियो मनोरंजन, एंजॉय कीजिए ये छोटी सी गजल।

0: टाइम चेक शाम के 5 बज रहे हैं.
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
2: साया जो हर पल हमारे साथ रहता है, एक ऐसा समय भी आता है कि वो साया साथ छोड़ जाती है, पर जो हमेशा दामन पकड़े रहती है वो है यादें.
3: राज कपूर एक ऐसे अदाकारा, एक ऐसे फिल्म मेकर, एक ऐसे एक्टर जिन्हें कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं. भारतीय इतिहास में यकीनन राज कपूर जैसे शुमन न कोई था और न कोई होगा. यादें प्रोग्राम में आज हम राज कपूर के उन फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया. म्यूजिकल रोमांटिक मूवी प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड बाय राज कपूर साहब, जो कि आई थी 1978 में, 1978 में सत्यम शिवम सुंदरम शायद ही हिंदी सिनेमा के इतिहास में और एक ऐसी फिल्म आएगी, द ट्रूथ द गॉड एंड द ब्यूटी. लीड एक्टर इस फिल्म में नजर आए शशि कपूर और जीना तमान. जीना तमान के किरदार इस फिल्म में काबिले तारीफ रही.
4: चंचल

फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के गीतों को संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने यशोमती मैया से बोले नंदलाला। इस गाने को लिखा पंडित नरेंद्र शर्मा ने और ये गाना पिक्चराइज हुआ उस दौर के चाइल्ड आर्टिस्ट पद्मिनी कोल्हापुरी पर।

फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम को लेकर शुरुआती तौर में कई कंट्रोवर्सीज का सामना राज कपूर को करना पड़ा। हालांकि उन्होंने न्यूडिटी को कुछ हद तक इस फिल्म में एक्सप्लॉइट किया, लेकिन आगे चलकर इस फिल्म के कहानी और रोमांस ने पूरी तरह से लोगों के दिलों को जीत लिया।

राज कपूर में खास बात ये थी कि कहानी फिल्म के जैसे भी हो, हर एक फिल्म से एक सोशल इशू को वे ले आते थे। प्रेम रोग जो कि आई थी 1982 में, हसीन खूबसूरत रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म रही।

इस फिल्म के जरिए सामाजिक मुद्दों को उन्होंने बड़े पर्दे पर पेश किया। एक विधवा स्त्री का इस समाज में क्या दर्जा है, इस मुद्दे को लेकर उन्होंने इस फिल्म को पेश किया। फिल्म प्रेम रोग में राज कपूर ने मोहब्बत के हर पड़ाव को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से पेश किया। पद्मिनी कोल्हापुर के बगल में थे ऋषि कपूर, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा।

फिल्म प्रेम रोग अपने दौर में एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई, जिसके लिए इस फिल्म को कई अवार्ड भी प्राप्त हुए। राज कपूर को प्राप्त हुआ बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, पद्मिनी कोल्हापुर को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया गया, संतोष आनंद को प्राप्त हुआ बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड, गाना रहा मोहब्बत है क्या चीज, गाने को संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

जहां मोहब्बत की खूबसूरती होती है वहां मोहब्बत के साथ साथ तन्हाई भी होती है। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, ऋषि कपूर के अदाकारी इस फिल्म में काबिले तारीफ रही।

जब राज कपूर के प्रोडक्शन के बाद चलती हैं, तो 1985 के फिल्म राम तेरी गंगा मैली को हम कैसे भूल सकते हैं? ये फिल्म साबित हुई ब्लॉकबस्टर, जहां मंदाकिनी की खूबसूरती और अदाकारी बड़े पर्दे पर धमाका कर दिया, बहुत ही इम्पैक्टफुल रही। रोमांटिक ड्रामा मूवी डायरेक्टेड बाय राज कपूर साहब। मंदाकिनी के साथ इस फिल्म में बतौर लीड एक्टर रहे राज कपूर के बेटे राजीव कपूर।

इस फिल्म में खास बात यह रही कि कहानी के साथ साथ इस फिल्म के गीतों ने धूम मचा दिया। टाइटल सॉन्ग राम तेरी गंगा मैली पिक्चराइज ऑन मंदाकिनी, म्यूजिक कंपोजर रहे रविंद्र जैन। हालांकि राज कपूर अपने फिल्मों में ज्यादातर शंकर जय किशन या फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बतौर म्यूजिक डायरेक्टर लेते थे, लेकिन इस फिल्म में रविंद्र जैन संगीत के साथ जुड़ गए। फिल्म राम तेरी गंगा मैली के बारे में बात करें तो इस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड ने अनेकों अवार्ड के साथ नवाजा, जहां रणधीर कपूर को प्राप्त हुआ बेस्ट फिल्म के लिए अवार्ड, राज कपूर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, रविंद्र जैन को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड, बेस्ट और डायरेक्शन और बेस्ट एडिटिंग के लिए राज कपूर को एक और अवार्ड से नवाजा गया। कई अवार्ड के साथ साथ फिल्म राम तेरी गंगा मैली को फिल्म कई नॉमिनेशंस भी प्राप्त हुए। राज कपूर एक दूरदर्शी फिल्म मेकर थे, समय के साथ साथ वे चलना जानते थे। 1991 में फिल्म आई थी हीना, म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा डायरेक्टेड बाय रणधीर कपूर। लेकिन इस फिल्म में खास बात ये रही,

कि राज कपूर 1988 में इस दुनिया से विदा ले लिया, इस फिल्म को पूरी तरह से उन्होंने प्लान किया था और साथ में डायरेक्शन भी शुरू कर दिया था। लेकिन उनके जाने के बाद भी उनके बड़े बेटे रणधीर कपूर ने इस फिल्म को संभाला और इस फिल्म को प्राप्त हुआ मेजर क्रिटिकल एंड कमर्शियल सक्सेस।

अपने दौर के फिल्म हेना एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का खिताब फिल्म फेयर ने दिया फरीदा जलाल को। इस फिल्म को बेस्ट सिनेमाटोग्राफी अवार्ड भी प्राप्त हुआ। लता मंगेशकर और सुरेश वातर की आवाज गूंजी एक बेहद ही दर्द भरे गाने के लिए, जाने वाले ओ जाने वाले। राज कपूर को हम अलविदा भी इस गाने से कह सकते हैं। राज कपूर के अधूरी फिल्म को रणधीर कपूर ने संभाला। हिंदी इतिहास के सबसे बड़े शोमैन रहे राज कपूर साहब। इस बात की पुष्टि उनके अनगिनत फिल्मों से, उनके अदाकारी से देखने को मिलता है। 1988 के फिल्मफेयर अवार्ड के दौरान राज कपूर को सम्मानित किया जा रहा था दादा साहेब फाल्के अवार्ड से, लेकिन उसी समय राज कपूर को अस्थमा का दौरा पड़ा। इससे पहले कि उसे अवार्ड प्राप्त हुए, उन्हें अस्थमा का दौरा पड़ा। प्रेसिडेंट ने उन्हें खुद आकर उनके अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया। कुदरत को कुछ और मंजूर था। उसके बाद वे अस्पताल में भर्ती हुए और 2 जून 1978 को इस दुनिया से विदा ले लिया।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाते चल, ये शाम के 6 बजे हैं। नमस्कार, 19 जुलाई 2026 रविवार की शाम, स्वागत आप सभी का इस बुलेटिन में। नजर सबसे आगे सुर्खियों पर। विश्व कप के फाइनल में अब कुछ घंटे बाकी, मॉरिशस समेत दुनिया भर में फुटबॉल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह। विश्व कप का फाइनल अर्जेंटीना और स्पेन के बीच। स्थानीय श्रमिकों की कमी के बीच विदेशी कर्मचारी मॉरिशस की अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों की रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। कृषि, उद्योग और निर्माण जैसे क्षेत्रों में उनका योगदान सराहनीय। 2050 तक कैंसर के नए मामलों की संख्या दुगनी हो सकती है, जिससे हर साल दुनिया भर में लगभग 35 मिलियन लोग प्रभावित होंगे। अपने वर्ल्ड कैंसर रिपोर्ट के संस्करण में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देशों से रोकथाम और शीघ्र जांच और उपचार को मजबूत करने की अपील की। विदेश में अमेरिका और ईरान के बीच हमलों के बीच मध्य पूर्व में जल और बिजली का बुनियादी ढांचा प्रभावित हुआ, वहां पर युद्ध तेज किया गया। बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत। पेश है समाचार विस्तार से। फीफा वर्ल्ड कप का आखिरी मैच, सबसे बड़ा सबसे खास मैच, फाइनल आज रात होगा अर्जेंटीना और स्पेन के बीच। 104वां मैच जो न्यूयॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा रात 11 बजे। ये मैच आप एमबीसी स्पोर्ट्स यानी एमबीसी 11

0: और एमबीसी प्ले पर देख पाएंगे। सुनिए,
1: अर्जेंटीना आज 2026 वर्ल्ड कप के फाइनल में स्पेन के खिलाफ अपना खिताब बचाने उतरेगा। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब यूरो कप का मौजूदा चैंपियन स्पेन और वर्ल्ड चैंपियन कोपा अमेरिका का मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना एक दूसरे के आमने सामने होंगी। एक तरफ अर्जेंटीना है जो वर्ल्ड कप की मौजूदा चैंपियन है और लियोनेल मेसी के दौर में एक और ट्रॉफी अपने नाम करना चाहती है। दूसरी तरफ स्पेन की टीम जो अपने नए और टैलेंटेड खिलाड़ियों के दम पर दूसरा वर्ल्ड कप खिताब जीतने की कोशिश कर रही है। यह फाइनल मुकाबला दुनिया के दो सबसे बड़े फुटबॉल दिग्गजों की टक्कर है। एक तरफ मेसी है जो अपना तीसरा वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहा है और दूसरी तरफ स्पेन के युवा सितारा लामिन यामाल है जो अपनी टीम की नई ताकत का चेहरा बन चुका है। सेमीफाइनल में फ्रांस को हराकर स्पेन की टीम का फॉर्म लगातार बेहतर हुआ है। फ्रांस के खिलाफ मैच में उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उन्हें खिताब का दावेदार क्यों माना जा रहा था। साल 2010 में साउथ अफ्रीका में चैंपियन बनने के बाद ये पहली बार है जब आज 19 जुलाई को स्पेन की टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। साल 2010 में स्पेन ने अपना फाइनल खेला था और नेदरलैंड्स को 1-0 से हराया था। वहीं अर्जेंटीना की टीम की बात करें तो ग्रुप स्टेज में अल्जीरिया, जॉर्डन, ऑस्ट्रिया को हराने के बाद उन्होंने नॉकआउट स्टेज में केप वर्दे, इजिप्ट, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड को बाहर का रास्ता दिखाया था। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी अपने कार्य में अब तक वर्ल्ड कप में 21 गोल स्कोर कर चुका है। 39 साल की उम्र में मेसी शायद आज रात अपने कार्य का आखिरी वर्ल्ड कप मैच खेल रहा है। इस 8 बार के बालोदो विजेता ने वर्ल्ड कप के इतिहास पर ऐसी छाप छोड़ी है जो किसी और ने नहीं छोड़ी, जिसमें 2 फाइनल मैच में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड शामिल है। अर्जेंटीना और स्पेन के बीच वर्ल्ड कप के इतिहास में 60 साल पहले सिर्फ एक ही बार मुकाबला हुआ था जिसमें अर्जेंटीना की जीत हुई थी 2-1 से। अर्जेंटीना और स्पेन का एक ऐतिहासिक और शानदार फाइनल मुकाबला एमबीसी 11 पर लाइव दिखा जाएगा। मैच से पहले रात 9 बजे स्पोर्ट्स टीम की तरफ से एक खास प्री मैच शो भी दिखाया जाएगा।
0: और कल तीसरे स्थान के लिए मैच खेला गया फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। एक तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाने के लिए इंग्लैंड की टीम आखिरी तक रली। गोल्स की बारिश दोनों तरफ से हुई लेकिन अंत तक आते आते कप से हाथ धो देने वाला इंग्लैंड तीसरे स्थान पर आया। जरा विस्तार रिपोर्ट में।
2: FIFA World Cup 2026 bronze final winners, England.
1: 2026 का वर्ल्ड कप 1966 के बाद से इंग्लैंड का सबसे बेहतरीन वर्ल्ड कप अभियान रहा है, जहां 48 टीमों वाले इस 23वें एडिशन में थ्री लायंस तीसरे स्थान पर रहे। आज रविवार की सुबह एक बेहद रोमांचक मैच में टोमास टुखेल की टीम ने फ्रांस को 6-4 से हरा दिया। हाफ टाइम तक अंग्रेज पहले ही 4-0 से आगे चल रहे थे, जिसमें पहला गोल तीसरे मिनट में ही डेक्लन राइस ने एक बेहतरीन लॉन्ग रेंज शॉट के जरिए किया। पहले हाफ में फ्रांसीसी टीम ने 3 और गोल खाए, जिसमें कुनसा ने 18 मिनट में गोल स्कोर किया और बुकायो साका का डबल रहा। अपनी टीम में जान फूंकने के लिए जीजे देशों ने उपामेकानो, जी बाकोला और देम्बेले को मैदान में उतारा और इसका असर तुरंत देखने को मिला। एम्बापे ने 48वें मिनट में अंतर कम किया। आखिरकार आक्रामक रुख अपनाते हुए फ्रांसिस टीम ने पलटवार किया और बारकोला ने एक गोल स्कोर किया। स्कोर 4-2 हो गया। 66वें मिनट में एम्बापे के एक और शॉट ने मैच को पूरी तरह से रोमांचक बना दिया। इसके बाद स्पेंस के एक मूव पर एक पेनाल्टी, मैग्नन के सामने साका ने दाई ओर शॉट मारकर पेनाल्टी को गोल में बदला और

0: with hat-trick of Puriki. इंजुरी टाइम में देम्बेले ने स्कोर को 5-4 कर दिया, लेकिन मैच के आखिरी पलों में जूड बेलिंगम के एक आखिरी गोल के साथ ये देशों के दौर का अंत एक हार से हुआ। फाइनल स्कोर इंग्लैंड 6 फ्रांस 4।
1: फ्रांस 4 इंग्लैंड 6। रिमार्केबल।
2: सुर्खियों में हम आपको बता रहे थे गन्ने के खेतों में, कारखानों या फिर निर्माण स्थलों में इनकी मौजूदगी बढ़ती जा रही है। देश में कर्मचारियों की कमी के चलते ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी कामगार अलग अलग क्षेत्रों में काम करने आ रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था में इनकी महत्वपूर्ण योगदान है। ज़रा विस्तार से रिपोर्ट में।
3: ये एक ऐसा काम है जो अभी भी ये कामगार सीख रहा है। पिछले एक साल से मॉरिशस आया हुआ ये मलागासी श्रमिक यहाँ खेतों में काम करता है। दिन के कामकाज में उसे अपने तीन हमवतनों की मदद मिलती है। रिकाल आल्सो कहता है, मलागास्कर में ज्यादा काम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ काम करने आया हूँ। हम सुबह 6 बजे से शुरू करते हैं और दिन के 3 बजे तक काम करते हैं। मुझे यहाँ एक नया अनुभव मिला है और शायद एक दिन मैं अपने देश में भी ऐसा काम कर सकूं। स्थानीय स्तर पर कामगारों की कमी के चलते लामारी स्थित इस जमीन के मालिक को काम सुचारू रखने के लिए विदेशी कामगारों की आवश्यकता पड़ी। माहेन राम गुलाम कहते हैं, कृषि के क्षेत्र में काम करने के लिए मॉरिशन कामगार नहीं है, इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। पिछले कुछ सालों के अंतर्गत मॉरिशन इकोनॉमी में विदेशी कामगारों की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण हुई है। 31 मई तक मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण सेक्टर में ऐसे 38,221 कामगार पाए जा रहे थे। ये दोनों सेक्टर सबसे ज्यादा विदेशी कामगारों को रोजगार देते हैं। मॉरिशस में सबसे ज्यादा भारतीय, फिर बांग्लादेशी और फिर नेपाली कामगार पाए जाते हैं।
4: हर महीना सैलरी मिलता है, रहने का खाने का सब अच्छा है और हम लोग बैंक से पैसा ट्रांसफर करते हैं हमारा घर पे परिवार में। बहुत बहुत तरक्की हुआ मेरा लाइफ में यहाँ के। मैं घर बनाया, घर पे बहन का शादी कराया। काम अच्छा से करते हैं, मंडे से सैटरडे तक, फिर संडे को हम लोग बाहर जाते हैं घूमने का।
5: 10 साल से ज़्यादा हो गया है मुझे इस कंपनी में। अच्छा कंपनी है, 3-4 बार रिटर्न आया मैं। बंगला इंडिया मिलके तो अच्छा काम करते हैं हम लोग, मॉरिशस वाले इतना काम नहीं करते हैं। इंडिया बंगला है, कंपनी चल रहा है।
6: मेसन का काम करता था, टाइल मेसन का, यहाँ पे वही कर रहा हूँ। सही है, खुश हूँ मैं।
3: नोवेलफॉन्स के इस टेक्सटाइल कारखाने में 10 साल से ज्यादा समय से विदेशी मजदूर काम करते हैं। वे वहां श्रम शक्ति का 85% हिस्सा हैं। ठेकेदार बिशम पोमेसो कहते हैं, अगर मेरे यहां से विदेशी कामगारों को हटा दिया जाए तो मेरा काम बंद हो जाएगा। मॉरिशन लोग आते हैं और कुछ दिन काम करके चले जाते हैं। इन विदेशियों को ज्यादा सिखाना नहीं पड़ता, वे अपने परिवारों को छोड़कर यहाँ आते हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। उनके साथ उचित व्यवहार करना चाहिए, वे हमारे लिए परिवार की तरह हैं। विदेशी कामगारों पर निर्भरता कई कंपनियों के सामने मौजूद वास्तविकता दर्शाती है। हालांकि इससे श्रम मंडी के भविष्य को लेकर सवाल भी उठते हैं। अर्थशास्त्री भविष्य जगन्नाथ कहते हैं, विदेशी मुद्राएं कमाने के लिए और वृद्धि लाने के लिए पैदावार और निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें मजबूरन विदेशी कामगारों पर निर्भर होना पड़ रहा है, नहीं तो अगर उत्पादन कम हुआ तो अर्थव्यवस्था के लिए परिणाम बुरा होगा। दूसरी तरफ विदेशी कामगारों का यहाँ आना इसलिए अच्छा है क्योंकि वे अपना अनुभव यहाँ बांटते हैं, लेकिन हमें एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है जहां पूरी निर्भरता विदेशी कामगारों पर न हो, जबकि लंबी अवधि के लिए ये भी अच्छा है कि ये विदेशी हमारे स्थानीय श्रमिकों को प्रशिक्षित करें। इन कामगारों के लिए मॉरिशस मुख्य रूप से जीवन बेहतर करने और अपने परिवारों को बेहतर भविष्य देने की संभावना जैसा है। 2026 की पहली तिमाही के दौरान ऐसे कामगारों की तरफ से 2.9 बिलियन रुपए उनके देशों की तरफ भेजे गए हैं।
2: ये एक बड़ी चिकित्सा उपलब्धि है और देश के पूर्वी इलाके के लिए पहली ऐसी सुविधा भी। फ्लक के सर अनिरुद्ध जगन्नाथ अस्पताल में उच्च टेक्नोलॉजी वाला रेडियोलॉजी मशीन लगाया गया है। इसका उद्घाटन 8 जुलाई को कई अतिथियों की उपस्थिति में किया गया। अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये उपकरण रेडियोलॉजिकल जांच को अधिक सटीकता के साथ और कम समय में पूरा करने में सक्षम है। इससे आपात स्थिति में तुरंत जांच कराया जा सकता है, जिससे जल्द से जल्द इलाज भी शुरू।

0: किया जा सकता है। साल 2050 तक दुनिया भर में सालाना तौर पर कैंसर के मामलों की संख्या 35 मिलियन तक दर्ज होने की संभावना है। कैंसर पर 2026 की वैश्विक रिपोर्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों से स्क्रीनिंग और इलाज के लिए कदम तेज करने की मांग की। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: 2050 तक कैंसर के मामलों की संख्या दोगुनी हो सकती है। कुछ दिन पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन और कैंसर पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की ओर से प्रकाशित कैंसर की स्थिति की वैश्विक रिपोर्ट में ये बात सामने आई। राष्ट्रसंघ के महासचिव के प्रवक्ता स्टेफान दुजारिक ने कहा,
2: Cancer claims more than 26,000 lives every day, with an estimated 20.6 million new cases and close to 10 million deaths annually. It remains the second leading cause of death globally after cardiovascular disease. WHO warns that without urgent action, the annual cancer cases are projected to rise to nearly 35 million by 2050.
1: WHO के मुताबिक 10 में से 4 कैंसर से बचा नहीं जा सकता। अध्ययन में इस बात पर जोर दिया गया है कि दुनिया में डायग्नोस्टिक किए गए कैंसर के नए मामलों में करीब 40% न बचने वाले मुद्दों के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि तंबाकू, शराब, इन्फेक्शंस और हद से ज़्यादा वजन। दूसरी तरफ रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख कि कैंसर दुनिया भर में स्वास्थ्य प्रणालियों को भारी रूप से प्रभावित कर रहा है। देशों में इलाज उपलब्धता को लेकर भी काफी अंतर पाए जा रहे हैं।
2: The report also reveals persistent and widening inequities in access to prevention, diagnosis, treatment and supportive care. Its analysis shows, for example, that while 87% of women with breast cancer survive at 5 years after their diagnosis in high-income countries, only 42% survive in low-income countries.
1: चुनौतियों के बावजूद डब्ल्यूएचओ ने कहा कि कई ऐसे सकारात्मक संकेत दिखाई दिए हैं, जैसे कि कुछ देशों में तंबाकू सेवन में कमी और पैपिलोमा वायरस के खिलाफ टीके की बदौलत सर्विकल कैंसर के मामलों में गिरावट। संगठन की ओर से सरकारों से कैंसर के खिलाफ संघर्ष और बचाव के लिए राष्ट्रीय कार्य योजनाओं में अतिरिक्त निवेश करने की मांग की जा रही है।
0: यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए जाने के 20 साल बाद अप्रवासी घाट ने इस सालगिरह को एक नए लक्ष्य के साथ मनाया। यादों को संजो कर रखना और साथ में मॉरिशस की विरासत को महत्व देना, इस अवसर पर कई परियोजनाओं का ऐलान भी किया गया। विदेश समाचारों में जॉर्डन में दो अमरीकी सैनिकों के मारे जाने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध और तेज हो गया है। वहां लगातार सातवें दिन मिसाइल और कामिकाज ड्रोन हमले किए गए। दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। और बुलेटिन के अंत तक आते आते ये खास रिपोर्ट पेश हैं वर्ल्ड कप के फाइनल के बारे में, जो अब कुछ ही घंटों में खेला जाएगा। उत्साह बढ़ रहा है, तैयारी चल रही है, कुछ लोग बड़ी स्क्रीन लगवा रहे हैं तो अन्य घर पर ही दोस्तों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। सजावटें, पकवान सब तैयार होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मैच शुरू होगा 2-3 घंटों तक कोई स्क्रीन के सामने से हिलने की भी कोशिश नहीं करेगा। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
3: क्यूबेक के इस स्नैक में फुटबॉल प्रेमियों के बीच फाइनल का उत्साह काफी समय पहले से ही बन गया है। आरबी सेलेस्ट और मेसी के फैंस अपने स्टार खिलाड़ियों को मैदान पर देखने का इंतजार कर रहे हैं।
4: Mon équipe favorite. J'espère que l'Argentine gagne.
5: On crée dans le foot et je pense que cette année, quand même, nous avons une forte possibilité pour regagner la Coupe. Vamos, Argentina!
3: Spain et Argentina के बीच होने वाले इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले के जबरदस्त अनुभव के लिए सब तैयार हैं।
6: Le trophée chez Weber Gardès exposé et aussi nous lance un jeu concours aujourd'hui. Il suffit juste de faire des prédictions.
3: फैंस के लिए इस विश्व कप की स्मृति के तौर पर अपनी पसंदीदा टीम की जर्सी खरीदने का आखिरी मौका भी रहा।
7: Nous pas supporter l'Argentine.
8: Pareil.
9: Catalan 10e étoile, le hat shot là.
10: Finale nous peut aller en Argentine, Espagne.
11: Dans le magasin qui m'est passé là.
10: Non, là ça va un tricot, un peu plus vite.
11: Prends un petit t-shirt là, monsieur.
12: Oui, pour mes petits enfants.
3: मेबाग में भी दूसरी जगहों की तरह दुकानों को वर्ल्ड कप के रंगों से सजाया गया है। फैंस को कई हफ्तों से इस फाइनल का बेसब्री से इंतजार रहा है।

0: ambiance, mais nous ne découvrons magasin, moi je dirais.
1: Argentine, Espagne, ça va être très très très chaud, je crois.
2: Ça, c'est un gros spectacle, ça. Nous allons attendre ça avec, avec tout la joie, l'espérer, ça qu'il faut gagner.
3: बैनर्स, झंडे, गाने बजाने और त्योहार जैसे माहौल के साथ इस फाइनल को फुटबॉल के असली जश्न में बदलने के लिए सब कुछ तैयार है।
4: Moi, Espagne, hein? Ouais, toi, qu'est-ce que tu penses?
5: Moi, c'est pareil. Moi, j'espérais Espagne gagner et sa Coupe du Monde. Hein? Une Coupe du Monde avec beaucoup de surprises.
4: Oui.
5: Surtout la part du Cap Verde qui est bien appréciée ce jeu.
6: I used to be a flying helicopter in Argentina, so I know Argentina. And I know Spain. Je parle, habla poco español. I speak a little bit of Spanish. So it's exciting.
3: ये एक ऐसी वैश्विक गतिविधि है जो सरहदों के दायरे से बाहर है और जिसे मॉरिशन फुटबॉल प्रेमी पूरी उत्साह के साथ जीते हैं।
7: चले जानते हैं मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात को ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और हल्की बारिश भी हो सकती है। कल दिन के दौरान धूप खिली रहेगी। दोपहर बाद सेंट्रल प्लाटू पर हल्के बादल घिरा सकते हैं और बारिश का भी अनुमान है। प्रवालेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। खासकर कल सुबह से दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 14 से 16, अधिकतम 23 से 25, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:44 पर, शाम को सूर्यास्त 5:48 पर।

देश विदेश की नई खबरों के साथ ये बुलेटिन समाप्त हो चला। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे न्यूज विभाग और तकनीकी पर फैजन का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए। थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। डोफेलिन शातो बेनारेस में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री धर्मदत्त कोटिक जो धर्म के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी मंगलवार को दिन के 11 बजे उनके बेटे उमेश कोटिक के मकान डोफेलिन शातो बेनारेस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ग्रांबॉ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन ऑन ट्यूसडे एट 11 AM। रारोड ग्रांड रोट्रेट में 96 साल की 96 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती इंद्रावती झरी जो विद्वंती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे सच्चिदानंद मुनिया के मकान रारोड ग्रांड रोट्रेट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। लासोस का थोबोन में 59 साल के 59 ईयर्स ओल्ड के श्री देवेन मर्टेन जो नादेन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पेपेजा बेकरी के मालिक थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनके मकान लासोस का थोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमौते मोरोश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। डिस्पेंसरी रोड विच एम मिल थ्रियोले में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के श्री इंद्रदेव बंधन जो आत्मा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के साढ़े ग्यारह बजे उनकी पत्नी नर्मदा बंधन के मकान डिस्पेंसरी रोड

कोट विचिया मिल थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए एसएसएस लेन थ्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 11:30 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

0: NBC Radio, 24 hours a day.
1: सीबी की ओर से एक जरूरी विज्ञप्ति सुनिए। कोहो मॉडल के इन इन इलाकों के ग्राहकों को मोसलमान एर्मिताज, अवेन्यू पानोरामा, अवेन्यू जुपिटर, अवेन्यू प्लूटो, अवेन्यू सैटर्न, अवेन्यू मार्स, अवेन्यू कोल्फिन और अवेन्यू काबोश के ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि कल सोमवार 20 जुलाई 2026 के प्रातःकाल के 8:30 से लेकर शाम के 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सीबी ग्राहकों को सूचित करता है कि जैसे ही मरम्मत कार्य समाप्त हो जाएंगे तैसे ही बिना कोई पूर्व सूचना बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। सीबी अपने सभी ग्राहकों के प्रति इन असुविधाओं के कारण अपनी क्षमा प्रार्थी हैं। सो ये थी एक विज्ञप्ति सीबी की ओर से।

शाम के 6:30 बज चुके हैं। नमस्कार श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ आरएम फ्री रेडियो, और आप इस समय सुन रहे हैं नई सोच कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में साथ देने के लिए मैं उषा कौर यहाँ पर, जी हाँ, आज रविवार 19 जुलाई 2026, और आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि काफ़ी लोग आज इंतज़ार कर रहे हैं फाइनल वर्ल्ड कप। कौन जीतेगा ये तो बाद में ही पता चल जाएगा, लेकिन जो लोग वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं इस शुभ घड़ी को, तो चलिए यहाँ पर हम आपका साथ देंगे खूबसूरत गानों को लेकर। और नई सोच कार्यक्रम कुछ भावगीत आप लोगों के नाम हम पेश करते हैं। कहते हैं ना, जिंदगी एक ख्वाब है और इस ख्वाब को हमें सजाना चाहिए हमेशा। अभिजीत की आवाज़ में।

दुनिया से दूर रह रहकर भी संगीत की दुनिया की एक धनवान आवाज की तुम सादगी हो। मुकेश आम आदमी की आवाज है, संगीत की ईमानदारी है, संगीत की सच्चाई है,

जी आशोताओं, कभी कभी जीवन में हम सोचते रहते हैं कि आगे चलकर हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन ये तो जीवन है, जो होना है वो तो होता ही रहेगा। कल किसने देखा, है ना। चलिए, घायल का ये खूबसूरत गाना सुनते हैं।

चलिए प्यारे दोस्तों, इस खूबसूरत प्रोग्राम में आप लोगों ने साथ दिया, नई सोच कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, इसी गीत के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होता है, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, दिलों की आवाज़ प्रोग्राम प्रस्तुत है कुछ देर में।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: जी हाँ दोस्तों, 7 बज चुके हैं और आप लोग सुन रहे हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम ऑन आरएम फ्री रेडियो, रेडियो मनोरंजन आपका मन पसंद रेडियो। और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए। जी हाँ, आज रविवार 19 जुलाई 2026 और ये कार्यक्रम खासकर आप लोगों के नाम। आपको क्या करना है, फ़ोन करना है ऑन 4028070 और मैसेजेस करना है ऑन 5250 6200 और अपनों के लिए गाना मांगिए और ये टाइम साथ मिलकर बिताएंगे, ये पल और खूबसूरत बनाएंगे। आज रविवार है, जैसे कि हमने कहा कि आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज लोग आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं वर्ल्ड कप फाइनल। जी हाँ, जहाँ पर कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक आप सबको और इंतज़ार की घड़ी बहुत ही जल्द समाप्त होने वाले हैं। और यहाँ पर हम साथ देंगे 90s और 80s के चंद खूबसूरत गाने। आप कहीं मत जाइएगा, बस आंदोलन का ये खूबसूरत गाना सुनते हैं और इस प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। रोमांटिक मौसम है, रोमांटिक गाने

0: दिलों की आवाज़ की
1: आवाज़ ना जाना मुझे छोड़ के और हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं। अभी तो 9 बजे ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा और हम चले जाएंगे यहाँ से। दोस्तों, प्यार किया है चोरी चोरी, क्योंकि हर मोहब्बत शोर मचा कर नहीं होती। कुछ रिश्ते खामोश नज़रों से शुरू होती है, मुस्कुराहट की हल्की सी किरण से बढ़ते हैं और धीरे धीरे दिल की धड़कन बन जाते हैं। और ऐसी मोहब्बत में ना दिखावा होता है ना शिकायत, सिर्फ एक दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने का जज्बा होता है। 7:15 बज चुके हैं, तो चलिए बढ़ते हैं आगे खूबसूरत गानों को लेकर। चलिए अगला गाना जो है रोहित जी के लिए, जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम बोबासा, और साथ ही साथ में वरुण के लिए जो इस समय ड्राइव कर रहे हैं, तो आपके लिए ये गाना वरुण। जैसे कि हमने कहा, 90s और 80s के खूबसूरत तराने, आप लोगों के नाम गर्दिश फिल्म से लिया गया।

0: RM3 Radio. Radio. Radio. दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज.
1: जी हाँ, बंटी और बबली, जहाँ बेटे बहू और पापा ने एक साथ मिलकर इस गीत पर नाचे और कितना अच्छा लगा उनको देखकर. जी हाँ, और कहते हैं ना, यहाँ पर अगला गाना हम चलाने जा रहे हैं. जी हाँ, दिलवाले फिल्म से लिया गया कुमार सानू की आवाज़ में. बहुत ही प्यारा गाना है. कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें. चेहरा हसीन हो तो नज़रें एक पल के लिए ज़रूर ठहर जाती है, लेकिन असली खूबसूरती उस मुस्कान में होती है जो किसी के दर्द को हल्का कर दे. जी हाँ, यहाँ पर हमें सुन रही हैं सुदेवी जी फ्रॉम वाक्वा, और गाना खासकर वो मांग रही हैं दीदी ललिता, कुशल फैमिली, आत्माराम भैया, दीदी सुनीता, शोभा देवी, नाम आलेगा की राम रतन परिवार के लिए. चलिए सुनते हैं.

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: 7:43 मिनट हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आवारा दिल का कोई ठिकाना नहीं होता। जहाँ मोहब्बत की खुशबू मिले वहीं उसका आशियाना बन जाता है, और आवारा दिल को कैद करना आसान नहीं, क्योंकि यह सिर्फ उसी के लिए धड़कता है जिसे रूह पहचान लेती है। चलिए इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर बेदर्दी फिल्म का नाम है। अलका याग्निक और विनोद राठौर की आवाज़ों में ये गाना जाएगा खासकर अनीता के लिए, जो इस समय हमें सुन रही हैं फ्रॉम क्यूपिप।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज।
1: 7:50 हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे जैसे कि हमने कहा बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं, आज फाइनल कप वर्ल्ड कप है फुटबॉल, और वैसे हम ज़्यादा फुटबॉल नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी ये मौका तो बार बार नहीं आता है ना। लेकिन फुटबॉल की दुनिया में जब भी वर्ल्ड कप फाइनल का जिक्र होता है, अर्जेंटीना और जर्मनी का नाम अपने आप जुबान पर आ जाता है। इन दोनों महान टीमों ने 3 बार वर्ल्ड कप फाइनल में एक दूसरे का सामना किया है। 1986 में, जी हाँ 1986 में अर्जेंटीना ने जीत का परचम ले लिया, और जबकि 1990 और 2014 में जर्मनी ने एक किताब अपने नाम किया। ये मुकाबले सिर्फ गोल्स के नहीं, हौसले, जज्बे और इतिहास के भी गवाह है। और हर बार जब ये दो फुटबॉलर ताकते बार बार आते हैं, तो दुनिया भर के करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं। तो चलिए उनको हम विश करते हैं गुड लक, सभी फैंस अर्जेंटीना और जर्मनी के। और ये अगला गाना उन सभी लोगों के लिए जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस खूबसूरत मौके को।

Sri Radio. Radio. Radio. दिलों की आवाज़।

8:04 हुए हैं दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ ORM Free Radio, और आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में हम साथ दे रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम अगला गाना चलाने जा रहे हैं महेंद्र जी के लिए, जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम पालमा। सुर का ये खूबसूरत गाना, जी हाँ, कभी शाम ढले तू मेरे दिल में आ जाना। जी हाँ, हम ज़रूर आएंगे, और यहाँ पर खास गाना हम चलाएंगे अंकिता के लिए, जो हमें सुन रही है रोजिल से। और वैसे आपको याद दिला दे कि अभी हम लाइव टिकटॉक भी कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों को हम हाय कहना चाहेंगे जिन्होंने जो लाइव हमें देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। याद दिला दें 4028085 4028070। जी हाँ, आप सुन रहे हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, और मैसेजेस आप कर रहे हैं 5250620600।

जी हाँ, दिलों की आवाज़ प्रोग्राम आपके नाम और यहाँ पर रियाना है जो हमें सुन रही है फ्रॉम फिनिक्स. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. और कावि है हमें सुन रहे हैं, शावी हाय आपको, किरण, संगीता जी हैं हेलो टू यू, निवेद है जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ में माधुरी जी भी हैं. हेलो सिदिक आपको, और सिदिक जो है सलाम आपको और हमारे सभी लिसनर्स के लिए जो हमें सुन रहे हैं और ख़ासकर जेनिता गाना मांग रही है अपने हस्बैंड दाविन और बेटा तानिश रामलाल के लिए. तान्या सिबालक, गुलशन है, संजय बुधवा है, नमस्ते आपको और साथ में आयशा. शानवी है, जी हाँ शानवी कृष्णवी, हेलो हाउ आर यू. हेलो आज गिनिशा, कैसी हो सिटार्ट, होप यू आर डूइंग वेल. हमारे सभी लिसनर्स के लिए जो इस समय हमें सुन रहे हैं, तो चलिए अगला गाना हम सुनने जा रहे हैं और साथ में अरविंद काहुनेन. गुरु फिल्म से लिया गया ए आर रहमान, चिन्माई की आवाजों में और सभी लोगों के लिए जो इस समय ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप लोग ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज़ ड्राइव केयरफुली.

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: आठ बजकर 20 मिनट हुए हैं और बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर तेज सनातन है हमें देख रहे हैं, हे माँ वो भी हमें देख रही हैं लाइव टिकटॉक और गाने भी सुन रहे हैं, एंजॉय भी कर रही हैं। और अनीता प्यतब नमस्ते आपको, और गाना आप मांग रही हैं अपने फैमिली और खासकर अपने दोस्तों के लिए। और रंभा जी जो हैं गाना वो मांग रही हैं अपने लिए और सभी पिटिया फैमिली के लिए। और कुछ लोग अभी भी काम कर रहे हैं जैसे कि हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो भी लोग काम कर रहे हैं तो आपके लिए भी हम गाना डेडिकेट करते हैं। और दिनेश गोपी हैं, हेलो टू यू। और साथ ही साथ में तायाक से, जी हाँ तायाक से हमें सुन रहे हैं। रफीक मोहित, जी हाँ रफीक मोहित हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी हमें सुन रहे हैं, आपके लिए गाना जाएगा। राहत फतेह अली खान का गाया हुआ गीत और साथ में गाना विशाल के लिए फ्रॉम बरखा, और संदेश सदा सिंह, हेलो टू यू।

0: RM3 Radio. दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: आठ बजकर 29 मिनट हुए हैं और यहाँ पर हमें सुन रही है रीना दुकारन आपके लिए गाना और स्वीटी के लिए भी और जाइना जी हाँ जाइना अपना जन्मदिन मना रही हैं आज तो आपके लिए भी हम गाना चलाएंगे तिलक फैमिली के लिए अगला गाना और साथ में परमेश है जो जुड़ चुका है जी हाँ और यहाँ पर आरजे रामचंद आपके लिए भी रुखसार आपके नाम गाना हम चलाएंगे और साथ में हरीश चुनी भी है थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर जॉइनिंग किरण आपके नाम अनीता दामिनी कादन आपके लिए भी गाना हम चलाएंगे और साथ में प्यारी रानी जोई सूरी जी के लिए जी हाँ आपके लिए भी गाना बबीता बोलाकी थैंक यू फॉर लिसनिंग वसंती तया बोला जी हाँ आपके लिए भी अगला गाना वैसे गाने आप सुन रहे हैं कभी किशोर

कुमार शानू, कभी कुमार शानू, उदित नारायण, कभी राहत फतेह अली खान, कभी हरिहरन और कभी कविता कृष्णमूर्ति, 80s और 90s के सभी सुपरस्टार, सुपर कलाकार, कलाकारों के गाने। जी हाँ, एक से बढ़कर एक गीत आपके नाम। और यहाँ पर अनुराधा पौडवाल और साथ है एसपी बाला सुब्रमण्यम और फिल्म का नाम है आजा मेरी जान।

जी हाँ, हमेशा की तरह काफ़ी लोग इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और साथ मिलकर गुनगुना रहे हैं। थैंक यू सो मच दिलों की आवाज़ प्रोग्राम। और यहाँ पर गाना हम चलाने जा रहे हैं शैलेंद्र गिल के लिए, जो हमें देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। और मिटोस के लिए भी प्रवीण जी, आपके लिए अगला गाना टोरस है, और साथ में विम। जी हाँ, विम। बर्थडे सॉन्ग, जी हाँ, बर्थडे विशेस टू अश्विता ऑफ सन फेडरेशन ऑफ इटली, है ना। तो अश्विता को हम ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देते हैं, हमेशा वो खुश रहे। सरामा के लिए, आरती राम सहाय के लिए, उनके लिए भी गाना हम चलाने जा रहे हैं। सालमा ओना चिलम, हेलो टू यू। और साथ ही साथ में डालिया फैमिली फ्रॉम डीन फेडरेशन, और जया लक्ष्मी जी वनक्कम आपको। महेश जो है गाना डेडिकेट कर रहे हैं पत्नी कीर्ति, बेटी केशा, बेटा कियान और महेश फ्रॉम लंदन। थैंक यू फॉर लिसनिंग। चलिए अगला गाना सुनते हैं, घूंघट में चेहरा आपका। चेहरा क्यों छुपाना है, और फिल्म का नाम है घूंघट, हरिहरन की आवाज़ में।

हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम भी हमसे ना कुछ कह पाए, लेकिन ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया। और यहाँ पर हम गाना डेडिकेट कर रहे हैं कविता के लिए जो हमें सुन रही है, और साथ में रुमिता गुजा गाना आप मांग रही हैं अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए और दशारथ फैमिली के लिए। और साथ में लवना भी हैं जो जुड़ चुकी है, इंद्रानी के लिए वो गाना मांग

चलिए अगला गाना आयशा के लिए जो हमें सुन रही है. थैंक यू डियर फॉर लिसनिंग मित्राज पंजाबी, हाय टू यू. और साथ में है दीक्षा के लिए, बीवी दीक्षा के लिए हम गाना चला रहे हैं विकास बालू.

तो प्यारे दोस्तों इसी के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त होता है 8:55 दिलों की आवाज़ प्रोग्राम आप लोगों ने सुना बहुत धन्यवाद मिलते हैं बहुत जल्द तब तक आप अपना ख्याल रखिए जी हाँ हमारी मुलाकात होगी कल सुबह AM 2 पर सुबह का नजराना प्रोग्राम को लेकर बहुत धन्यवाद ऐसे ही साथ दीजिए उषा को दीजिए इजाज़त नमस्कार आदाब शुभरात्रि

रात के 9:12 श्रोता लोग सभी प्यारे श्रोतागण के हमार नमस्कार स्वीकार कर जा आज है रविवार के दिन और रात्रि में त ठंडा गिरता तो हर खातिर भोजपुरी तर का मन कर ले कोनो बढ़िया गाना सुने के ता अवश्य नंबर वा मिला ला और झट से मांग कर जा का सौंदे काथोवा सैक उषा तो हर संगे रात के 11 बजे ले चला आज का पहल का गीत कृषि के गावल गीत

अरे गुनी बुलाने से क्या होगा, जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा, अरे गंदे पानी पीकर प्यास बुझा लिया तो कुआं में डुबकी लगा।

अरे रिश्ता जोड़ने से क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या

0: भोजपुरी तड़का
1: हमने के भाई बहन लोगन आशा करत है कि तो लोग अपन शरीर के ख्याल रखत आवाजा स्वास्थ्य या सबसे बड़ा धन है रोज रोज के व्यायाम कर जा कोनो बोलेला कि समय नहीं मिलेला 24 घंटा में 15 मिनट निकाला और तो हर रूप में निखार चलाई तो चला दामाद बाबू के बाद सुना पुनल हिरीलाल के गावल गीत और ये गाना जितना कोई की वक्त हमने के सुना था और फुटबॉल देखे खातिर फाइनल वर्ल्ड कप देखने खातिर तैयारी करता बन जा तो चला और ये गाना खासकर रोहित जी खातिर जो हमने के ये वक्त सुना था वो भाषा से

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी
0: तड़का
1: तड़का
2: रात के सारे 9 बज गल बा संगतिया लोगन आज तो विश्व भर के लोगन के जबान पर एक ही बात वर्ल्ड कप के महान फाइनल और स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में धमाकेदार मैच के कर जीत होए के कर हारे इता समय के पास जवाब बाते चला रात के 11 बजे शुरू होता अपन टीवी के स्क्रीन के साफ कर जा और चमके के चाही तो चला अगला गीत रूपा खातिर जन रहिला क्यों पे पौरी बखत हमने के सुना था गाना मांगा तवंजा पति रजन और बेटी आरती के लिए

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 9:47 हो गल बा वर्ल्ड कप 4 बरिस में एक हला आवेला 104 मैच 48 टीम अब केवल दो टीम रह गल का अर्जेंटीना के मेसी बनी मसीहा या स्पेन के यमल आज करी कमाल ई देखे के चाही तोहरो जीवन भी वर्ल्ड कप की नियर बा हर राह पर हर मोर पर तोरा चाहेला समस्या से लड़ते रहे विश्वास रखिया तो हर जीत निश्चित है।

0: भोजपुरी तड़का
1: रात के 10 बज गल बाद 10 बजकर 3 मिनट हो गल बाद श्रोता लोग आजकल के ज़माना में खाली पुरुष नहीं बल्कि महिला लोगन भी फुटबॉल और स्पोर्ट्स में रुचि रखे लन जा कहाँ से कहाँ पहुँचा गल बा महिला एगो समाज के आगे बड़े जे खातिर महिला और पुरुष के कंधा से कंधा मिला के चले के तो चला अगला गीत नीरज गुप्त मधु के गावल गीत फिनो से और गाना इंद्राणी जी खातिर जो ये वक्त हमने के सुना था क्यू पिप से और विनोद जी जी हाँ विनोद भाई साहब कैसे हुआ गाना तो हर खातिर और तो हर परिवार खातिर

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
2: श्रोता लोग बढ़िया बढ़िया गीतवन के मजा लेवा तवन जा तोहरे लिए भोजपुरी तड़का के सिलसिले रोज के रोज चाहेला और सातों दिन एक सप्ताह में गीतवन के साथ गमत होता तो चला अगला गीत माधवी खातिर जन हमने के सुनाता वाकवा से गाना मांगा तवन जा बेटा केशव और बेटी खुशी खातिर

रात के 10:33 हो अलबा शोतालो जिंदगी जोन हता एगो रहस्य है एकर अर्थ कौन ची है कोई के पता नहीं चलेला अर ढूंढते ढूंढते जिंदगी खत्म हो जाला पर जवाब नहीं मिलेला यही खातिर बोलल जाला चार दिन के जीवन में जी भर के जिला और समय नई बाते अहंकार और नफरत करे के तो चला अगला गीत इंद्रासन से ढोलक ललिता पुनीत के गावल गीत

चलो देखते देखते रात्रि के 11 बज जाए तो हर से अनुमति लेके समय आ गलबा वर्ल्ड कप के फाइनल मैच भी शुरू हो बे करी तो चलो जोन टीम ज्यादा बरियार बा जोन ज्यादा हो गया योग्य बातें ओकरे जीत होई आज बहुत फैंस खुश हो जन और बहुत फैंस निराश पर अंत में स्पोर्ट्स के विजय होई जीवन में तोहरो विजय होई चला अपन स्वास्थ्य पर ध्यान दिया और हमर और से नमस्कार शुभ रात्रि

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: सुनहरी पल रेडियो मॉरिशस के साथ
4: आप सभी लोगों का गिनिशा का प्रणाम और स्वागत है आप सभी लोगों का इस खूबसूरत से सफर में जिसका नाम है सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। वैसे दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं ना कि वक्त जो होते हैं कभी वापस नहीं आता, लेकिन मैं कहती हूँ एक अच्छा गीत वक्त को ना जरूर वापस लेकर आता है। एक ही पल में हम फिर से स्कूल के दिनों में पहुँच ही जाते हैं, या किसी शाम को, बड़ी खास शाम को, या किसी सफ़र या किसी खुशबू को फिर से हम जी लेते हैं। और इसीलिए तो हम सब पुराने गीतों से इतना प्यार करते हैं। तभी तो गिने चुने नगमे को लेकर हम आए हैं आप लोगों का साथ देने के लिए सुनहरे पल में। गिनिशा का साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।
5: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

वैसे आपने सोचा है कि अगर कभी बारिश हो, हाथ में चाय हो और बैकग्राउंड में पुराने बॉलीवुड के गीत, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। बिल्कुल दोस्तों, सच बताइए, इससे ज्यादा खूबसूरत कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है। तो चाहे आज मौसम कैसा भी क्यों ना हो, हम आपके दिल का मौसम जरूर सुहाना बना देंगे और सुनहरे पल में बस बड़े शिद्दत से आपका साथ देंगे। आप भी बने रखे हमारे साथ और बैठ जाइए आराम से हमारा साथ देने के लिए। इन खूबसूरत नगमों के जरिए आपके दिल का हाल हम जरूर बयां करेंगे।

दूर होते होते वो आवाज डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं। चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा चंदन का चेहरा नजर नहीं आया। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है गरीब।

वैसे जिंदगी में नए लोग मिलते रहते हैं। बिल्कुल जी, जिंदगी में तो नए लोग मिलते ही रहते हैं, लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं ना जो बचपन से लेकर आज तक हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। जब भी दिल उदास हो या खुशी को और बढ़ाना हो, बस एक पुराना गीत चला लीजिए और देखिए कैसे दिल खुद ब खुद हल्का हो जाता है। और आपके दिल को हल्का करने के लिए एक ऐसा गीत हम पेश करना चाहेंगे जो शायद हो सकता है आपके फेवरेट हो। तो चलिए, ये अगला नगमा गिनेशा की तरफ से आपके नाम, आपके उन खूबसूरत यादों के नाम।

वैसे एक जमाना था जब लोग कैसेट रिवाइंड करके अपना फेवरेट गाना दोबारा सुनते रहते थे। और आज प्लेलिस्ट में हजारों गाने होते हुए भी दिल वही पुरानी मेलोडीज ढूंढता है ना, क्योंकि असली म्यूजिक वही होता है जो सालों बाद भी दिल में उतर जाए। और आज हम वही अनमोल नगमों को लेकर आए हैं आपके लिए सुनहरे पल में।

दोस्तों, आज का ये सफर सिर्फ गाने सुनने के लिए नहीं है, ये सफर है अपने बचपन से मिलने का, अपने यारों से मिलने का और उन लोगों को याद करने के लिए जिनके साथ आपने ये गीत कभी गुनगुनाए थे। तो जहाँ भी हैं मुस्कुराइए, आप दिल खोलकर मुस्कुराइए और दिल खोलकर सुनिए और हर गीत को अपनी कहानी का हिस्सा बना लीजिए। हम हैं गिनिशा और आप सुन रहे हैं सुनहरे पल सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर।

तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये खूबसूरत खूबसूरत गाने जो हमने पेश किए आप लोगों के लिए सुनहरे पल में? अच्छा लगा ना? वैसे और भी खूबसूरत गाना अगर ऐसे ही आपको सुनना है, अपनी यादों में फिर से डूब जाना है, तो हम आपको फिर से रेंडेवू देते हैं एक और खूबसूरत सुनहरे पल में, रोज रात को 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर और अपना ख्याल रखना।

तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये खूबसूरत खूबसूरत गाने जो हमने पेश किए आप लोगों के लिए सुनहरे पल में? अच्छा लगा ना? वैसे और भी खूबसूरत गाना अगर ऐसे ही आपको सुनना है, अपनी यादों में फिर से डूब जाना है, तो हम आपको फिर से रेंडेवू देते हैं एक और खूबसूरत सुनहरे पल में, रोज रात को 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर और अपना ख्याल रखना।

0: You're listening RM Free Radio. Radio. Radio.
1: Rakachika

0: सी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: दिस इज समथिंग

0: तो मालूम था पहले से।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस।

0: सी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: ए, बोल ए कचुंबर।
2: अरे बोल पाखंडी,
1: तू शुरू करता है क्या?
2: अरे तू ही शुरू कर।
1: अच्छा ठीक है, सुन ले।
2: सुना
1: सरे गा रे गा रे गा पा गा पा गा पा दा पा दा पा दा पा दा सा सा दा पा दा पा गा पा गा रे गा रे सा सा दा सा पा दा गा पा गा रे गा सा बोल बोल बोल।

लेट गया। अरे सो गया, एक कुंभकर्ण की औलाद सो गया। तू हार गया, मैं जीत गया। 1 2 3 4 चल।